101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज है शुक्रवार, शक सोमवत 1900

1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, ईस्वी सन 2025 दिनांक 8 मई। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की

0: घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अमेरिकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को
1: ज्ञानी लोगों के साथ रहें क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान सुनेगा भाग 182। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनेगा। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8 समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए भाग 27।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, 11 बजे सुनिए रंग तरंग, 12 बजे हिंदी समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर और 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 27 आज। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी में आज सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका स्वर और स्वर ममता सिंह का है, संपादन सहायक काजल बदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता, हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका रिजल्ट का चक्कर, लेखक हरीश दीक्षित, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। आपको फिर से बता दें, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगर वासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: वाह बहुत सुंदर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धि की इस बंदिश को बड़ी ही सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया कल्पना जी, और इस रचना को सुनते हुए हमारा मन भक्ति भाव के सागर में हिलोरे ले रहा था। और अब बताइए कि अब कौन सी रचना आप प्रस्तुत करेंगे या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: अब मैं वीणा ताई के आवाज में और उन्होंने बनाई हुई रचना राग दुर्गा में विलंबित एक ताल का एक ख्याल सुनवाना चाहूंगी।
0: प्रस्तुत है जी ये रचना।

0: आज की इस कड़ी में हम जानकारी दे रहे थे विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के बारे में और उनकी बंदिशें सुनवाई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये कड़ी भी बहुत पसंद आएगी और कल की कड़ी में कुछ और जानकारी, कुछ और बातें हम लेकर उपस्थित होंगे। कल्पना जी, आपको धन्यवाद। अब हम यहाँ पर विदा लेते हैं आज की इस कड़ी में। नमस्कार।
1: नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से।

अनोखी अदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद अली ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का ये गीत। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है।

0: सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई गांवों में
1: जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।

पुराने दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

उमा देवी की आवाज में चंद्रलेखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे एस राजेश्वर राव। लीजिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सुनिए नदिया के पार फिल्म का गाना। शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओ, सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम और प्रणाम अयोध्या प्रसारित होगा सुबह 8:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज की बात। साथ ही भेंट वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे ब्रजेश कुमार मिश्र से संजय धर द्विवेदी के द्वारा की गई बातचीत, जिसका विषय होगा फोर्टिफाइड चावल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और भ्रांतियां। इसके अलावा सुबह 9:00 से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। फोन नंबर होगा 7376 80 40 90। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसके बाद फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुनेंगे दोपहर 1:00 से। साथ ही 2:00 से गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीतांजलि और बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना दोपहर 2:30 से, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। साथ ही इसी के अंतर्गत बहनें सुनेंगी वार्ता, जिसका विषय होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर रेड क्रॉस के विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर अजय मिश्रा। शाम 5:00 से प्रसारित किया जाएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानवता को जीवित रखना और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। और स्थान के अंतर्गत आप सुनेंगे अजमेर के बारे में, साथ ही जानकारी लेंगे शब्दावली में। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:30 से और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। इसके अलावा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और शाम 6:45 पर किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय होगा बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करें। साथ ही भेंटवार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर प्रभाकर शुक्ल से के द्वारा की गई बातचीत, जिसका विषय होगा हरी खाद उगाएं। 8:15 पर कार्यक्रम होगा गीत गुंजन और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे महफिले गजल। इसके बाद रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इसके अलावा समाचारों का प्रसारण आप सुनेंगे अपने निर्धारित समय पर। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। सुबह के 7:18 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में 7:20 पर आप सुनेंगे गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3

0: आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
3: प्रदेश में 20 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा है।
5: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के

0: को पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
2: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
3: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम, क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जहां फलों की बैगिंग की गई है।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
4: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के मान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। IPL क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट

पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के सात बजकर बत्तीस मिनट हुए हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: खैर इफको नैनो उर्वरकों का कमाल हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुना थे सखी सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com।

0: yodhyavani@gmail.com।
1: श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं अमृत कलश में ये कार्यक्रम का पहला भजन।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में कार्यक्रम का अगला भजन।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित

0: भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के

0: ये छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
3: सुगम संगीत में आइए सुनते हैं ये पहली गजल लता मंगेशकर की आवाज में।

की आग है, प्रेम की अग्नि, लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद साइट ढूंढते रहो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
0: आपके संदेश,
2: संदेश से आते हैं
0: आपके गीत,
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
0: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
3: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन की जो पूरी दुनिया को इंसानियत और निस्वार्थ सेवा की याद दिलाता है। जी हां, आज है 8 मई यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि उस जज्बे का सम्मान है जो युद्ध की विभीषिका हो या प्राकृतिक आपदा बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक पहुंचता है। दोस्तों, रेड क्रॉस की पहचान वो लाल प्लस का निशान है जो मुसीबत में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर चमकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 8 मई को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है? दरअसल आज के दिन सन 1828 में जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। वे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक थे। 1859 में साल्फेरिनो के युद्ध की भयानक त्रासदी को देखने के बाद ड्यूनेंट का दिल पसीज गया और उन्होंने घायलों की मदद के लिए इस संस्था की नींव रखी। दोस्तों, ड्यूनेंट को शांति के क्षेत्र में दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 1901 में दिया गया था। दोस्तों, रेड क्रॉस संस्था को अब तक कुल 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944, 1963 में। साथियों, भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेड क्रॉस का नाम केवल दवाइयां पहुंचाना नहीं है, इसके 7 मुख्य सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। चाहे बॉर्डर पर जंग छिड़ी हो या कहीं भीषण आग, भीषण बाढ़ आई हो, रेड क्रॉस के स्वयंसेवक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच जाते हैं जहां और कोई नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है मानवीय पीड़ा को कम करना। ये बुद्ध बंदियों की

सहायता करते हैं, आपदा के समय भोजन और चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं और रक्तदान शिविरों के माध्यम से लाखों जिंदगियां बचाते हैं। दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस सिर्फ भाषण देने का दिन नहीं है, बल्कि मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भी दिन है। हम शायद युद्ध के मैदान में ना हो या ना जा सके, लेकिन अपने आसपास के रेड क्रॉस सेंटर से जुड़कर ब्लड डोनेशन यानी रक्त दान तो कर ही सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका दिया हुआ एक यूनिट खून किसी परिवार का चिराग बुझने से बचा सकता है। दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों की सेवा से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। तो दोस्तों, आइए आज इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हम सब मिलकर शपथ लें कि हम भी समाज से प्रेम करेंगे, शांति और सहायता का हाथ बढ़ाएंगे। और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है कलंक। गीत को आवाज दी है श्रेया घोषाल ने।

0: श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं: आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 जीएसटी के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹266 जीएसटी के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार प्रातः प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता के अंतर्गत बृजेश कुमार मिश्र से संजय धरतीवेदी के द्वारा की गई बातचीत, जिसका विषय है फोर्टिफाइड चावल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और भ्रांतियां।
4: श्रोताओं, अक्सर ये बात चर्चा में रहती है कि कोई इस तरह का चावल आता है जिसको हम लोग प्लास्टिक का चावल कहते हैं। बहुत दिनों से मन में ये विचार था, हमने जानने के लिए प्रयत्न किया, तो आज आइए जानते हैं उसका सच क्या है। हम आज जानेंगे फोर्टिफाइड चावल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में और उससे जुड़ी कुछ भ्रांतियों के विषय में। और इस विषय पर पूर्णतः जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जिला पूर्ति अधिकारी श्री बृजेश कुमार मिश्र जी। मिश्र जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
4: हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो फोर्टिफाइड चावल की चर्चा आई कि खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्या है ये फोर्टिफिकेशन?
5: देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है

0: इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाने में विटामिन और मिनरल के स्तर को बढ़ाना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आहार में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके, इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिल सके।
1: जी,
0: सरकार की मंशा यह है कि जो ऐसे गरीब परिवार जिनके पोषक में वो महत्वपूर्ण तत्व नहीं उनको मिल पाता, वो सरकार फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से उनको वो पोषक तत्व उपलब्ध कराए।
1: जी,
0: ये मतलब होता है फोर्टिफिकेशन।
1: ये फोर्टिफिकेशन हो गया आपका। इस चावल को खाने के कोई फायदे हैं?
0: फोर्टिफाइड राइस के कई पोषक गुण हैं, क्योंकि इसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं।
1: जी,
0: ये पोषक तत्व जो है वो अमोनिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बचाता है, जो शरीर के अंदर लोगों के अमोनिया या अन्य मेल न्यूट्रिएंट्स की स्थिति बनती है उसको ये दूर करता है। आयरन अनीमिया से बचाता है, फोलिक एसिड निर्माण और खून बनाने में सहायक होता है, और विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है। फोर्टिफाइड चावल के नियमित सेवन से बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है, इससे बच्चे का या वृद्ध का जो ग्रोथ है या उनकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है।
1: यानी चावल जो है उसका वह स्वरूप जिसमें कई तरह के तत्व मिला दिए जाते हैं तब वो फोर्टिफाइड चावल बनता है। अब बात आती है कि ऐसे तो हम सामान्य चावल पकाते हैं जैसा सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या इस चावल को पकाने की कोई विधि अलग है क्या?
0: नहीं, इसमें कोई विधि नहीं, जैसे सामान्य चावल पकाते हैं हम ऐसे ही पकाते हैं। इसमें बताना ये चाहेंगे कि ये जो फोर्टिफाइड राइस होता है
1: जी,
0: ये जो हमारे चावल होते हैं सामान्य चावल, इनके टूटे हुए कण इनको मिलिंग और हॉलिंग के माध्यम से पीस करके इनमें ये फोर्टिफाइड राइस के जो फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन एक्सेट्रा मिलाए जाते हैं, इनको मिला के बनाते हैं। ये 1:100 मतलब एक क्विंटल चावल में 1 किलोग्राम की का मिक्स करके इसको तैयार किया जाता है। और इस चावल को जैसे सिवैयां हम बनाते हैं उसी प्रकार मशीनों के द्वारा छोटे छोटे चावल
1: कड़ जो है
0: कड़ बना करके तैयार किए जाते हैं, और 1 क्विंटल चावल में 1 किलोग्राम ये चावल मिक्स किए जाते हैं, जिसमें लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये प्लास्टिक के चावल।
1: बहुत दिनों से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि कहीं विदेश से कुछ इस तरह का चावल आता है जो प्लास्टिक का चावल है और लोगों के खाने में आ जाता है, जिससे उनका जीना दुभर हो सकता है आगे।
0: नहीं नहीं, ये भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं। लोगों को ये जानना चाहिए ये सरकार जो है आपके पोषण की कमी को दूर करने के लिए इस चावल को सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्कूल के मिड डे मील में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जो
1: बच्चों का पोषण
0: जो पोषण हो सके उनके विकास में कोई कमी ना आने पाए।
1: ब्रजेश मिश्र जी, चावल में पोषक तत्व पहले से ही विद्यमान है। ब्रजेश मिश्र जी, चावल में पहले से ही जो है पोषक तत्व विद्यमान है, फिर ये एडिशनल पोषक तत्वों को मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है?
0: आमतौर पर जो चावल होता है इसके मिलिंग और पॉलिशिंग के समय इसके फैट और सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो भरपूर जो उसकी ब्रायन होती है, चोकर होता है, वो हट जाता है
1: जी।
0: जिसके कारण इसके 70-90% के विटामिन्स और अदर मिनरल्स वगैरह जो है उससे अपने पोषक तत्व खत्म कर देते हैं, उससे निकल जाते हैं। इसलिए चावल को फोर्टिफाई करने में उनके सूक्ष्म तत्व न सिर्फ फिर से जुड़ जाते हैं बल्कि और ज्यादा मात्रा में मिलाए जाते हैं, जिससे ज्यादा और पौष्टिक बन जाता है चावल। इसलिए चावल का फोर्टिफिकेशन किया जाना सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: एक चीज मैं आपसे फिर जानना चाहता हूं कि जैसे सरकार ने जैसे इस तरह के चावल को तैयार किया और विभिन्न माध्यमों से कुछ जगहों तक वो पहुंचता है, शेष भारत में अगर पोषण की स्थिति गड़बड़ हो रही है तो ये फोर्टिफिकेशन वाला चावल उनको कैसे उपलब्ध हो सकता है, कैसे अन्य लोग भी इसको पा सकते हैं?
0: सरकार इस पर लगातार प्रयासरत है। और आपको बता दें कि टोटल जो पॉपुलेशन है हमारी उसके 80% लोगों को सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन उपलब्ध करा रही है उस राशन में फोर्टिफाइड राइस मिल रहा है लोगों को। तो 80% लोग तो PDS के माध्यम से सैचुरेट हो रहे हैं, रेस्ट के बारे में सरकार पॉलिसी बनाकर आगे भी जाएगी।
1: यानी जो वितरण के अंतर्गत है चावल, जो आपका माध्यम है वितरण का सरकार का, जैसे चावल, गेहूं, जो कुछ भी दिया जाता है आम जनता को, उसमें इसी तरह के चावल का प्रयोग हो रहा है?
0: जी, 100% इसी प्रकार के चावल का प्रयोग हो रहा है।
1: जो जनता इस तरह के चावल को ले जाती है और उसके मन में ये भय बना हुआ है हमेशा कि ये चावल प्लास्टिक वाला चावल है जो हमको वितरित करके मिल जाता है और उसको खाने का साहस नहीं करते हैं लोग, क्या आम लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कभी कोई प्रयत्न किया गया कि एक विशेष किस्म का फोर्टिफाइड चावल है और जो आपके लिए बनाया गया है ये प्लास्टिक चावल नहीं है?
0: निरंतर इस पर प्रयास किए जाते रहे हैं। राशन की दुकानों पर वितरण के समय वो ऑडियो चला करके बताया गया है, स्कूलों में जिंगल्स चला करके दिखाया गया है कि फोर्टिफाइड राइस क्यों फायदेमंद है, इसका महत्व जीवन में क्या है, लेकिन फिर भी जो है लोगों में
1: भ्रांति
0: बनी रहती। हम लोग

0: फील्ड पर जाते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, तो सबसे पहले फोर्टिफाइड राइस के बारे में ही उनसे क्वेश्चन करते हैं
1: जी।
0: कि क्या आप जानते हो, बुला के लोगों को बोलते हैं, अम्मा ये बताओ वो जो चावल लेती हो उसमें जो सफेद सफेद थोड़ा अलग प्रकार का रहता है वो क्या है, खाते हो या फेंक देते हो? तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो खा लेते हैं, नहीं हटाते, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम उसे हटा देते हैं। तो उनको बताया जाता है कि नहीं, ये इस चावल का सबसे पोषक पार्ट है, इसको फेंकना नहीं, इसको खाना है। तो लोग कहते हैं अरे साहब हमको पता नहीं था। अब

0: तो लोग कहते हैं अरे साहब हमको पता नहीं था, अब तो हम खाएंगे। विभाग लगातार प्रयास कर रहा है इस संबंध में लोगों को जागरूक करें कि उस फोर्टिफाइड राइस का 100% प्रयोग करें, वो उनके और उनके परिवार के सेहत के लिए अति महत्वपूर्ण है।
1: हम स्वयं भी इस बात को नहीं जानते थे और इस तरह की बात, प्लास्टिक चावल की बात मेरे सामने भी आ चुकी है और न जानने के कारण हम लोगों को एक बार भ्रम की स्थिति बनी थी। मैं चाहता हूं कि आप जनता को सीधे इस संबंध में एक जानकारी दें।
0: मैं जनता से अपील करूंगा कि राशन की दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत या उनके बच्चों को बाल पोषाहार के अंतर्गत या आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी राइस मिलता है, जो चावल मिलता है, वो फोर्टिफाइड चावल है, किसी भ्रांति में न पड़े। वो आपके सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। उसे अवश्य इस्तेमाल करें और अपने बच्चों की ग्रोथ और विकास को सुनिश्चित करें।
1: ब्रजेश मिश्र जी, आप जिला पूर्ति अधिकारी हैं, आपने फोर्टिफाइड चावल के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जिससे आम लोगों में जो ये भ्रम कि वो प्लास्टिक चावल है ये दूर होगा। आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और जनता से सीधे संवाद करें इन बातों को कहा, आपको आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, इस भेंटवार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ब्रजेश कुमार मिश्र से संजय धर द्विवेदी के द्वारा की गई बातचीत, जिसका विषय था फोर्टिफाइड चावल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और भ्रांतियां। और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं भाई सुनते हैं समाचार पत्रों से। राम मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बृहस्पतिवार से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब आम श्रद्धालु भी परिसर में स्थित इस उप मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 9 मई को अयोध्या में शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अयोध्या जिले के किसानों के लिए कृषि विभाग ने बड़ी पहल की है। किसानों को अब 50% अनुदान पर ढैंचा बीज उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत ढैंचा बीज सिर्फ 155 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। बीज का वितरण लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा, जिसकी पहली लॉटरी 10 मई को निकाली जाएगी। पीजीटी में सॉल्वर गैंग पर रहेगी पैनी नजर। 10 मई को 13 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में 23,597 अभ्यर्थी लेंगे भाग। परीक्षा राम मंदिर की सुरक्षा और सख्त होगी। 25 नए वॉच टावर, 5 बैग स्कैनर बढ़ेंगे। एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम पर मंथन। स्मार्ट मीटर प्रीपेड से पोस्टपेड में बदले। ग्रामीण उपभोक्ताओं को लो बैलेंस पर कटौती से मिली राहत। विद्युत विभाग के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति। अयोध्या में भी खुला यूडीआई का आधार सेवा केंद्र। अयोध्या में आधार कार्ड बनाने के लिए अब लोगों को जन सेवा केंद्र, बैंक और पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। यूडीआई ने यहां आधार सेवा केंद्र खोला है, जो प्रतिदिन 200 निवासियों की को सेवाएं देगा। ये केंद्र सप्ताह में 7 दिन खुलेगा। इस केंद्र की शुरुआत बीएसएनएल कार्यालय सिविल लाइन परिसर में की गई है। यहाँ पर जनपद निवासी अपना आधार नामांकन और अपने आधार में सुधार व अपडेट करा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए आवेदन करें पात्र। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जल्द ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शुरू हुई स्वगणना। 29 स्थानों पर बनाए गए सहायता केंद्र।

0: प्रणाम अयोध्या। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9 बज चुके हैं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91-61-877-347।
3: हेलो
4: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
1: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
6: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com, ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका। और ये पहली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा और नूर की। और आप सभी सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गीत मुकेश और कंचन की आवाज में। साथ ही इंदिवर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसएम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376 80 40 90। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य सुनना ना भूलें। श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की। आप सभी ने फरमाइश की है मोहरा फिल्म का गीत सुनने की, जिसमें स्वर है उदित नारायण और साधना सरगम के। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है विजू शाह ने।

श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हता इस प्रकार है। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 जीएसटी के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹266 जीएसटी के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम है।

हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आप सभी ने फरमाइश की है धर्मकांटा फिल्म का गीत सुनने की, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत के बोल हैं नौशाद के और संगीत से पिरोया है सुल्तान अहमद ने।

दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमें लिख भेजी है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहानी आप सभी सुनना चाहते हैं मनहर उदास और अनुराधा पटवाल के स्वरों में राम लखन फिल्म का गीत आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

0: शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और आपका पूरा मुलानी परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं उदित नारायण की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: चलो
1: हाय राम।
0: अब दिल क्यों थाम लिया, क्यों थाम लिया।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
2: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
1: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
2: और साथ में अपना नाम, पता
1: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
2: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
3: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
6: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
5: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
6: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
7: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
7: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: भाई हेलो, अयोध्या में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हेलो
9: हेलो
8: हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका?
9: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
8: उज्जैन से बोल रहे हैं, कौन, क्या नाम आपने बताया?
9: प्रेम सिंह सिसोदिया।
8: अच्छा, कौन सी फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
9: जी बताऊंगा मैं आपको, जी फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।
8: अच्छा, और क्या करते हैं आप? और
9: जी गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे।
8: बिल्कुल, हम आपको सुनवा देंगे
9: जी।
8: ये बताइए क्या करते हैं आप?
9: जी मैं बताऊं, मैं खेती किसानी का काम करता हूं दीदी।
8: जी जी
9: जी हाँ, और मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूं।
8: अच्छा, आकाशवाणी अयोध्या के सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं?
9: जी सारे कार्यक्रम तो नहीं सुन पाता हूं, लेकिन जैसे कि कुछ आसपास की बातें हुए, कार्यक्रम हुआ, फोन इन प्रोग्राम हुआ, जो शाम को जो आता है ना
8: जी,
9: जीवाणी के तहत वो प्रोग्राम सुनता हूं, ऐसे मतलब कार्यक्रम कुछ कार्यक्रम सुन लेते हैं हम लोग।
8: बहुत अच्छी बात है कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे आकाशवाणी अयोध्या के साथ लगभग कार्यक्रम सुन लेते हैं। तो चलिए हम आपकी पसंद का गीत निकाल चुके हैं, प्ले कर रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
9: जी। थैंक यू सो मच दीदी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
8: थैंक यू
9: जी, ओके बाय।

0: मुझसे शादी करोगी,
1: मुझसे शादी करोगी।
2: देखते हैं हमारे कौन से कॉलर है जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो,
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? गोंडा से स्वाति बात कर रही हैं। स्वाति, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
3: पहले तो ऑल इंडिया रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: स्वाति, आपको भी और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। और बताइए कैसा लग रहा है, फोन लग गया है आपका?
3: जी मैम, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: और सारे कार्यक्रम सुनती हैं आकाशवाणी अयोध्या के?
3: जी मैम, सारे प्रोग्राम सुनते हैं। तो आज तो सुबह अमृत प्लस से स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा, अब तक बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। स्वाति, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आपने बताया नहीं? तहलका मूवी का सॉन्ग आपके लिए हम प्ले कर चुके हैं, सुनिए अपने पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैम। सीमा बोल रहे हैं वैशाली से।
0: सीमा देवकाली से बात कर रही हैं। सीमा, सबसे पहले बता दीजिए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी आप?
1: आर्मी खिलौना का।
0: आदमी खिलौना है। क्या करती हैं सीमा आप?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। वर्क का काम वगैरह सब करते हैं।
0: अच्छा, इस समय क्या कर रही हैं अभी आप?
1: सुना मैम आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: प्रोग्राम सुन रही है। काम करने के साथ साथ प्रोग्राम भी सुनती रहती हैं।
1: तो सुनते हैं आपका
0: चलिए सीमा, हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा दे रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: सारा प्रोग्राम।
0: नमस्ते।

0: भाई देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हैं जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: हम विनय कुमार बेनबंसी ढकवा बाजार रउजा प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं मैडम।
0: प्रतापगढ़ से आप बात कर रहे हैं। विनय जी क्या करते हैं आप?
1: मैडम हम एमपी भोपाल में जॉब करते हैं, उधर रैपिडो और ओला गाड़ी चलाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है कि
1: इधर बहन की शादी है आज मैडम। बहन में पूनम बेनवंशी और जीजा का नाम है धीरज बेनवंशी, तो आज शादी में आया हूँ। 8-9 की शादी है मैडम।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप शादी में आने के बाद भी हमारे कार्यक्रम

0: सुन रहे हैं, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: जी मैडम, मूवी का नाम है दिल है बेताब, उसमें एक गाना है कि पहली बार का मिलना पागल कर देता है, ऐसी लाइन है मैडम, याद हमारा।
0: चलिए हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।

0: भाई हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कोई श्रोता हैं जो लाइन पर बन चुके हैं, उनसे हम बातें कर लें। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: लालती नाम है मेरा।
0: लालती जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं मिल्कीपुर अयोध्या से बात कर रही हूँ।
0: मिल्कीपुर अयोध्या से आप बात कर रही हैं। लालती, क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पे रहती हूँ,
0: घर पे रह के कुछ
1: घर का काम वगैरह करती हूँ।
0: पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैं
0: किस क्लास तक?
1: मैम मैं बीए तक
0: ग्रेजुएशन किया है आपने?
1: जी मैं
0: तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं आपने जारी रखी? आगे क्या करना चाहती हैं, कुछ सोचा नहीं है आपने?
1: जी मैम कुछ प्रॉब्लम थी पैसे वगैरह के, इसलिए नहीं कर पाई।
0: चलिए कोई बात नहीं, और आपकी जब प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आप अपने भविष्य के लिए आगे जरूर सोचिएगा, पढ़ाई आगे करिएगा या फिर कोई कोर्स करिएगा। लालती, हम कौन सी फिल्म का गीत आज आप सुनेंगी?
1: मैम हम साथ साथ हैं मूवी का।
0: चलिए हम आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा दें। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। भाई ये लालती जी हैं जो हम साथ साथ फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं। ये तो सच है कि भगवान है।

0: देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो,
1: हाँ मैं श्याम जी बोलता हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: हेलो,
1: जीवन दिल्ली टेलर है। हाँ, जीवन दिल्ली टेलर, अमानीगंज अयोध्या।
0: अमानीगंज अयोध्या से बात कर रहे हैं। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: यहाँ देश प्रेमी का कोई भी गाना।
0: देश प्रेमी का कोई भी गाना। चलिए,
1: हाँ,
0: हम आपको देर न करते हुए आपकी फिल्म का गीत सुनवा दें।
1: हाँ,
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जाओ, अरे जाओ ना।

भाई देखते हैं हमारे कोई श्रोता है जो लाइन पर बन चुके हैं. हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? आप थोड़ा सा पास फोन करिए अपने. ऐसा ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं. हेलो, हाँ नाम बताइए अपना. अच्छा, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? राम बलराम फिल्म का गीत सुनेंगे. चलिए हम आपकी फिल्म का गीत सुनवाते हैं आपको. कौन सा गाना सुनेंगे आप? हमसे भूल हो गई. चलिए हम आपकी फिल्म का गीत निकाल चुके हैं और प्ले कर रहे हैं. आप सुनिए अपनी पसंद का ये गाना.

दोस्तों, हेलो अयोध्या कार्यक्रम को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने में कंट्रोल रूम से हमें तकनीक सहयोग दे रहे थे अरविंद कुमार जी। श्रोताओ, इसी गीत के साथ हेलो अयोध्या कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रियंका को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को 101.9 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

अभी आपने सुना सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, साथ ही आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का आज का भाग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा

0: यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
0: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
0: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
0: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
0: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
0: जी,
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है, और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है,
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं,
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं, ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।

0: में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: মহামানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।

0: जनगण मनय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही

0: ये रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्वबोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री

0: शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम NCERT का आज का भाग। एक आवश्यक सूचना, दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376-8040 नंबर। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 बजे

से 6 बजे के मध्य सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य ही तो बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं, सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य है तो प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता इस प्रकार है। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 जीएसटी के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को ₹266 जीएसटी के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त और जमा किया जा सकता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम को नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम
0: बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ।
0: अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल, लेक सिटी।
0: तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं।
0: क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। कोई में जो भी घूमने की जगह उनको बता देते हैं, ये जैसे उदयपुर में सिटी प्लेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सर्कल है, तेलियों की बाड़ी है।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
1: उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद शुरुआत ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से।
0: यानी कि ठंड के दिनों में?
1: जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं?
1: मैडम बिल्कुल चलता रहता है विविध भारती हमारा उस समय।
0: तो क्या कभी आपके किसी यात्री

0: ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए या फिर ऐसे कुछ?
1: नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम आवाज से चलाते हैं मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिल्कुल। पंच सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम
0: जी। ये बिल्कुल सही बात है
1: और हमको वीर भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो
0: जी, और
1: गाने के बोल है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है।
0: ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है।
1: और मैडम इस गाने को हमारे साथ में हमारी वाइफ शांति वारी भी सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आपको और हमारी सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नेहा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपने आवाज से पहचाना है या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज?
1: जी पता चल गया।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ नेहा जी।
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरी फ्लोर मैंने धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर आइए नेहा जी आप बारिश में।
0: जी मैं मांडो घूम चुकी हूँ। जी जी जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी जब हम मांडो

0: महेश्वर मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे
1: था?
0: जी। तस्लीम जी ये बताइए, आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं?
1: जी जी कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ।
0: तो फिर आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे।
1: जी जी, और ये अपना SMS के बहाने US के तराने तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा।
0: ओ ऐसा, तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के लगभग हुए हैं
0: जी,
1: बराबर मालूम भी नहीं है। वो ज्ञापन सुना करते थे, वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे सर
0: जी। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है।
1: जी नहीं, मैं सुनता हूँ सुबह 8 बजे से, तो रात 1 फ्लोर में चला करती है तो 9-10 बज जाती है, गीत तक सुना करता हूँ मैं।
0: क्या बात है, ये बताइए तस्लीम जी कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: 2 अक्टूबर फिल्म में गीत है साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ना शराब, हमको तो नशा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब।
0: क्या बात है, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है।
1: जाना मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: ओहो, डायलॉग पे डायलॉग, क्या बात है।
1: सतीश गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं।
0: क्या बात है,
1: दिल नहीं लगता तो आपको फोन लगाते हैं।
0: ओहो, क्या बात है क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: मैडम जी सब कुछ आपसे सीखा जी आपने। हमें क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। जो सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी।
0: जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गहरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है।
0: क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी है शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे।
1: डायलॉग ही चलेगा जी।
0: ये बताइए सतीश जी,

0: अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक तौर पर कहाँ रहते हैं?
1: मैं जलंधर दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट है जी हमारी।
0: अच्छा अच्छा जी, और क्या करते हैं आप
1: जी? मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को।
0: तंग करते हैं घर वालों को?
1: फ्री है नहीं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हो गया ना।
0: ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए होंगे।
1: कहते दिल होना चाहिए था जवान उम्र की रखिया। मैडम सैर करते हैं एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, और आज टाइम खुश रहते हैं। मैडम गीत सुनेंगे, राजकुमार फिल्म है जी वो, देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा।
0: ओहो क्या बात है, क्या आप गीत गाते भी हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैडम पंजाबी में सुना दूँ हिंदी वाला?
0: कोई भी गीत सुना दीजिए।
1: पंजाबी में सुनाता हूँ आपको।
0: बिल्कुल।
1: ठंडा हो जाओ चूल्हा चौंका, वेड़ा सुनम सुना, दस जा किंज दाल बनावा, किंज आटा गुन्ना, उन्हां नी याद आऊगी। ओए होए, मैं क्या नी जदों, मैं क्या नी जदों तुर जाएंगी, ओ पेके जान वाली है। सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं जा रहे हो तो गाड़ी, मोबाइल में फोन आ जाता है तो गाड़ी जो सैर पे लगाए।
0: बिल्कुल।
1: और जानवरों को दाना डाले, गर्मी है, अपने कोठों पे वो कटोरे रखे, उन पे अपने पानी और दाना जूल डाले।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। चलिए सतीश जी, फिर आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रू

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी आपकी दुआएं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ कस्टमर के साथ।

0: को गाइडिंग कर रहा हूँ।
1: आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया?
0: हाँ जी हाँ जी, मुझे आपसे बात करने में बहुत टाइम हो गया, तो सोचा आज विविध भारती के हेल्प फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूँ और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूँ।
1: क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट है वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे?
0: नहीं, वो अभी फोटोज के साथ बिजी है, उन्होंने कश्मीरी ट्रिप में वो फोटोज

0: उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी, जिस तरह शमी कपूर शर्मिला टैगोर ने वो नगमा जल्दी के अंदर शूट किया था जानसा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आपसे बात करने का,
1: तो आपने मौके पे चौका मार लिया।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा ये बताइए कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं?
0: जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है
1: जी,
0: मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है।
1: अच्छा आप इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए आप जो काम करते हैं ये गाइड का, तो आपको किस किस तरह के अलग अलग लोग मिलते होंगे या फिर कुछ अनुभव आते होंगे, कोई अच्छा सा किस्सा किसी टूरिस्ट के साथ हुआ हो तो आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ हर देश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे, जो विदेश के लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं कश्मीर को एक्सप्लोर करके जाते हैं और बहुत अच्छी मैसेज लेकर जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब उनके हम अच्छी गाइडिंग करते हैं, उनका अच्छे से साथ देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ से एक अच्छी मैसेज लेके जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा ही हो रहा है, लोग यहाँ से बहुत अच्छे खुशी होके वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ, उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे,
1: तो क्या बात है,
0: ज्यादा अच्छा रहा था।
1: फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है, तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।
2: ये

0: श्रोताओं, आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने, 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर 2687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज से। शब्दकार मुस्तार सिद्दीकी, संगीत हरिहरन का और एल्बम का नाम लविंगली योर्स।

वाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।

0: दिन
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर,
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
3: आजा शाम होने आई।
4: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना, शुभा मधुकल की आवाज से इन्हीं का लिखा हुआ गीत, संगीत जवाहर।

एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे

0: देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी, टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड।

पंकज उधास की आवाज आपने सुनी, शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।

रंग तिरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना,

0: डीसीपीपी और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, 8 से 12 मई तक हम मना रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना, शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: प्राणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड।

0: और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
3: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
5: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: बाजू

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

0: सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली
0: कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल संगीत है राजेश रोशन का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस फिल्म का गाना उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत एआर रहमान का।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा को देंगे विराम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: लोक परंपराओं की मधुर छाओ में लोक रंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लोक जीवन में जब खुशियों का नया सूरज उगता है, जब आंगन में किलकारी गूंजती है, तब स्वर बनकर खिल उठते हैं सोहर के गीत। ये केवल गीत नहीं बल्कि खुशियों की अभिव्यक्ति, संस्कारों की मिठास और हमारी मिट्टी की सौंधी महक है। खुशियों की दस्तक जब आंगन में आती है तो लोक स्वरों में मिठास घुल जाती है। सोहर के सुर अपनोपन की बात, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं ये सोहर नूतन पांडे की आवाज में।

कितनी मिठास है इस लोक गीत में, थोड़ा सा चुलबुलापन, थोड़ा सा रूठना, थोड़ा सा मनाना, लेकिन अंततः ये गीत दिलों को छू जाते हैं। लोक गीतों की मिठास ही कुछ और होती है, इनमें गांव की गलियों की खुशबू, रिश्तों का अपनापन, भावनाओं की सादगी। ऐसा ही एक और लोक गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा सेना की आवाज में।

वह गीत जब होते हैं तो उस घर में और भी रौनक सी आ जाती है, क्योंकि विवाह गीत केवल सुर और शब्द नहीं होते, ये रिश्तों की मिठास, परंपराओं की गरिमा और उत्सव की उमंग का सुंदर संगम होते हैं। जब आंगन में शहनाइयां गूंजती हैं, हंसी ठिठोली का माहौल सजता है, तब लोक स्वरों में ढले विवाह गीत हर दिल को आनंद से भर देते हैं। यही तो हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृति।

0: वंदना शुक्ला जी के गाए इसी लोकगीत के साथ हमारा लोकगीत का सफर अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, दिन के ठीक 1 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड
3: तो देर किस बात की जनाब अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर
2: ayodhyaakashwani@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या
4: अल्फाज दिल के कुछ तरानी प्यार के कुछ नगमे यादों के कुछ रंग बहार के नमस्कार श्रोताओं मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह और आप सुनेंगे अब कार्यक्रम अपनी पसंद का कुछ तुमने कहा आप

की फरमाइशों से सजा फिल्मी गीतों का खूबसूरत कारवां। गीतों की रंगोली सजी है और कार्यक्रम है कुछ तुमने कहा। आप जहां भी हैं अगर हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए आपकी पसंद पे हम ये कार्यक्रम सुनवा रहे हैं आपके पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सुहाग से। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आपने पसंद किया है इसी गीत को। विष्णु टेलर दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, नरेश मल्होत्रा नीटू शिवाजी कॉलोनी रोहतक से। रोहतक तक हमारे श्रोता हैं, ये बड़ी बात है कि हमारे श्रोता इतनी दूर दूर से हमें संदेश भेजते हैं। कमल स्वनेही, इन्होंने नरवेल महाराष्ट्र से हमें संदेश भेजा है। नीलू मेघ, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी लिखी है, सुख दुख के इस फेर में मनवा बड़ा अधीर, अपने अपने दर्द हैं क्या तुलसी क्या मीर। बहुत सुंदर आपने लिखा है, शुक्रिया आपने हमें संदेश भेजा है राजधानी रायपुर से। अगला गीत है सुनील पाठक, जो इन्होंने पसंद किया है अनारकली बाजार जगराओं से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। सतीश अनेजा चंडीगढ़ से। आफताब अंसारी, इन्होंने इसी गीत की फरमाइश के साथ बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं कि हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। हीरामन शिंदे, इन्होंने हमें भेजा है। राजेश कुमार वर्मा राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। नारायण लाल साहू जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। गंजन येले दरियापुर बाबली से। रियासत हुसैन सिद्दकी जसपुर उत्तराखंड से। प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से। विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से। जाकिर मंसूरी बाजार रोड मुंगिसापुर से। बी आई धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। राधेश्याम शर्मा गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा से। सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से। ई आर फैजल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। मसरूर हुसैन हेड़ा सहारनपुर से। अरुण कुमार मालवीय बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से। महाराज कीर्तनपुर गोस्वामी, इन्होंने हमें संदेश भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। वेद प्रकाश मेधा नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म सुहाग से।

दोस्तों आप कार्यक्रम सुन रहे हैं कुछ तुमने कहा, और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा तो हमें संदेश भेजें, व्हाट्सएप संदेश करें, फेसबुक पर करें, और अगर आपको लाइव हमसे बात करनी है तो हमारे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या में भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। फेसबुक पर अपनी पसंद का गीत, नाम और पते के साथ आप हमें भेज सकते हैं।

करते हैं। और अब आप हमारे कार्यक्रमों को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीर रांझा से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जगमोहन सिंह प्रजापति लोहडडा जिला बागपत से, मोहम्मद यासीन अंजन दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से, राधा नामदेव सहारनपुर से, पटियाला दुर्ग से संजय कुमार साहू, रवि कुमार राहू कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, कमल सिंह गंज डुंडवारा से, मोहम्मद कलीम अंसारी नाना लाम से, इन्होंने कार्यक्रम की बहुत तारीफ की है और इन्होंने ये भी लिखा है कि कृपया हमारा ये संदेश किसी भी गीत में शामिल कर ले। नाना लाम से जिन्हें हमें संदेश भेजा है, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से, रामचंद मखेजा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से, दिलावर खान एलिजा नायाब, रिजवान खान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से, शुभचंद्र बजाज कालका से, राजू गोविंदगढ़ मांझी वाली से, करनपुर राजस्थान से, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से, सोमेंद्र यादव बालकृष्ण गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, बबलेश पवार पारसमणी रेडियो श्रोता संघ है इनका गांधी चौक बड़मेर रात से, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। अहमदपुर खैगांव खंडवा मध्य प्रदेश से कैलाश जी ने हमें संदेश भेजा है। सीताराम जी ने एकता कॉलोनी रोहतक से हमें संदेश भेजा है। दीपेश वर्मा ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर नौसाद अहमद सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से, राजेश वर्मा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, लाल बाबू दीवाना बिहार से, विनोद गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से, विनोद बारसा जी ने हमें संदेश भेजा है इसी गीत के लिए। संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से, संतोष नामदेव ओम प्रकाश राय बलिया से, बाबू भाई इन्होंने हमें संदेश भेजा है जवाहर नगर उदयपुर से, धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, बनवारी जयपाल इन्होंने हमें संदेश भेजा है जिला श्री गंगानगर से, नंद किशोर घटे बीड शहर महाराष्ट्र से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से, पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म हीर रांझा से।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म साजन के गीत के लिए पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं ईश्वर मेहर, ग्राम भटुनी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से, बटीडा रोड, मंडी डबावाली से राजेंद्र नारंग, रविंद्र दास, किशनगंज बिहार से सदाशिव धोरात, देवागौ तहसील पूना महाराष्ट्र से, रांची झारखंड से हमें ये संदेश भेजा है जीवान विश्वकर्मा जी ने। रमेश चौहान पंजाब से, विनोद मूरत इन्होंने हमें संदेश भेजा है उज्जैन बोरखेड़ा से, पटवाजी ग्रामधरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से, महेंद्र मोदी, मुकेश गोस्वामी इन्होंने हमें संदेश भेजा है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, ज्ञान भूषण शर्मा, बालकरण वर्मा ग्राम पंचायत बिठना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, श्याम सुंदर महेश्वरी फारबिसगंज बिहार से, हुकुम कर्माकर। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से कलीम जी ने। शंभू दयाल खटक बिमला देवी, इन्होंने हमें संदेश भेजा है गांव जाखोद से। आजान कुमार सिंह, इन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण करने पर समस्त आकाशवाणी परिवार को और सभी श्रोताओं को बधाई दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें संदेश भेजा है काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से। अशोक कुमार वर्मा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त नाभा। देवेंद्र कुमार गुप्ता कस्बा। शमसुल कमर राही, इन्होंने हमें संदेश दिया है जलगांव जामोद खाम गांव महाराष्ट्र से। बिल्लू सिंह चिंडलिया। गोविंद वैष्णव, आपने ग्राम लसूडिया पारा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेजा है। श्रवण कुमार प्रजापति ग्राम जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। नरेंद्र शर्मा जेटली, विनोद लेखपाल रनवार गांव रावर जिला करनाल से। कुमार कृपाल सिंह परिहार मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलाबालोद तहसील आलोट से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप। राजीव वर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से। रणधीर गुप्ता ओखला संगम बिहार दिल्ली से। शरीफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से। जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल। ओम बगाड़िया ग्राम बांडी वाला फजलिका से। उत्तम सिंह जंघेल, इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है सोहन जोशी जी की। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खांडवा से संदीप कुमार। पिंगवाला चौक गोराया जालंधर से राजकुमार रेवार। सादुल शहर राजस्थान से अजीत कसाना। लदावली जिला मुरादाबाद से कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे। राघव बघेल लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। हरजिंदर छिंदा गांव नथाना पंजाब से। माखन वर्मा अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से। मोहम्मद फारूक शेख, इन्होंने हमें संदेश भेजा है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव। संतोष भाकरे शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से। दतार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से। अशोक सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से। राजू कुमार प्रवीण सोनी गुजरात गांधी ग्राम से। सत्येंद्र चंसौलिया पंजनिया पजौनिया जिला जालौन से। राजकोट गुजरात से रश्मि पांड्या राहुल मनवार। शाहूनगर यवतमाल से। सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन। गांव अलगी डांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव। बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म साजन से।

0: की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी। अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
4: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
3: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
4: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
3: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंके, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
4: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

गीतों भरा सफर चल रहा है और चल रही है आपकी पसंद के गीत जो आपने हमें संदेश में लिखकर भेजा है, और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपके संदेशों को, आपकी बातों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अब बताते हैं कि कार्यक्रम का अगला गीत हम किस फिल्म से सुनवा रहे हैं और हमारे पसंद करने वाले श्रोता कौन कौन से हैं। अगला गीत है फिल्म दो बदन से पसंद करने वाले हमारे श्रोता है राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंड

थे मोहम्मद रफीक पवार इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं। अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश हमसे की है। सालार पहलगाम से पीरजाद मेहरुद्दीन ने इसी गीत की फरमाइश की है। अनिल वर्मा सदर बाजार कुरावली से, उत्तम कुमार पाकुड़ झारखंड से, सुदर्शन साह पद्मा टॉकी से, ब्रजेंद्र कुमार जयजान भोला कॉलोनी से, सदर बाजार कुरावली से इसी गीत की फरमाइश अनिल जी ने की है। विनय बेंडे दतरंगी भाटापारा से, हीरामणि वर्मा। श्रोताओं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो पता भी ज़रूर हमारे इसमें संदेश में शामिल करें ताकि हम आपका नाम आपके पते के साथ पढ़ सकें। हमारे लगभग श्रोता अपना नाम और वो पता लिखते हैं लेकिन कुछ श्रोता नहीं लिखते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना नाम और पता पूरा ज़रूर लिखें। पुराना तालाब डुमराव से वजीउल्ला अंसारी, मोहम्मद इंतजार। भोजपुर तगा सहारनपुर से, ज्योति नगर नोखा राजस्थान, पुखराज बड़गुजर। बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से, चंद्रकांत शाहू इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, किशोर कुमार सामले दरबार कॉलोनी सनावत से, मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से, इरशाद अहमद रायपुर अनी जिला बनारस से, मास्टर अब्दुल माजिद अंसारी, जॉन डिकोस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से, गोवर्धन बिहार कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मास्कीन, सुखविंदर सिंह जोड़ा पंखा रोड जनकपुरी से, सुभाष गोदरा ग्राम हीरावली फजलिका पंजाब से, पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल रचिता खुराना, तुलसीदास अनोखे लाल, अब्दुल सत्तार अब्बासी, इन्होंने इसी गीत की फरमाइश की है। मुगलपुरा बागपत से नंद कुमार ठाकुर, चरौदा बार नावा पारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, सुधीर नूतन, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश हमसे की है। सदानंद मंदूरकर डबकी रोड अकोला से, चिन्मय महतो जमशेदपुर से, राशिद हुसैन अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, अशोक वर्मा, मुकेश कश्यप जिला मुरादाबाद दुल्हापुर से, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है और सेम जगह से इनका संदेश भी आया है। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म दो बदन से आशा भोसले की आवाज में।

अगली फरमाइश फिल्म फर्ज के गीत के लिए पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बंडू लोहार पोपलघट हिंद राज रेडियो श्रोता संघ तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से। इसी गीत की फरमाइश है हमारे पास रफी रहमान मंगल बाजार कटिहार से, रश्मि पांड्या राजकोट गुजरात से, ताज अंसारी आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से, रामानंद जी सहादतगंज से, बोधराज खोखाल नई दिल्ली से, रमेश चौहान कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से, माखन वर्मा नंदघाट घाट छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद रफीक पवार सदर बाजार कुरावली से, अशोक सिंह धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो पेश है आपकी पसंद पे ये गीत।

क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से इमरान शेख, इसी गीत की फरमाइश की है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान ने दिग्दर्शन गौड़, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है मेरठ से। शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज कालका जी से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। उत्तम कुमार भागवत पाकुड़ झारखंड से, मुकेश शर्मा दुर्गभिलाई से, सत्येंद्र चंसौलिया जिला जलौना से, रूपेश संघई परमणि महाराष्ट्र से, आलोक वर्मा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, सुदामा नगर खांडवा से, लक्ष्मी नंदिनी ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, पुखराज बड़गोजर विजय मोहन 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा और झज्जर

0: दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत। कहते हैं जख्म हंसते नहीं दुखते हैं, लेकिन ये जख्म हंसता हुआ है। मोहम्मद रफी और बलबीर की आवाज में ये गीत।
1: सर फिर भी झुकाना ही पड़ा,

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत

मोहम्मद रफी और बलबीर के गाए इसी गीत के साथ हमारा फेसबुक श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, दिन के ठीक 2 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
2: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

तेरी मौजूदगी से मिली जिंदगी को ठंडी छाओ, तेरी मौजूदगी से मिली जिंदगी को ठंडी छाओ, वरना इस दिल के हिस्से में बस धूप ही धूप थी। मोहब्बत जब शब्दों में ढलती है तो गजल बन जाती है, और जब वही गजल दिल को छू जाए तो हर शख्स अपने किसी खास को याद करने लगता है, और ये गजलें सीधा दिल तक हमारे उतरती हैं। जगजीत सिंह की ये गजल सच में दिल में उतर जाए।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYA AKASH

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। सुनिए समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
5: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई तरीका शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली BJP सरकार शपथ लेगी। BJP के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में BJP विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
4: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और NDA शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। DMK और ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना DMK पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल

0: में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
4: माइग्रेशन पाथवे।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

0: of free trade agreements for countries to avail of it.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77

0: 1318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। दिन के 2:30 हुए हैं। हमारी बहनें सुने अपना कार्यक्रम अंगना।

0: मुसहरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: रोचक जानकारी और नेक नेक गीत के लेके एक बार फिर से हाजिर है आपके रेडियो सखी आरती सगरो श्रोता सखी का मार सब प्रेम नमस्कार। और बताओ बहनी, का हाल चाल है अपने घरे दीवारे के? आप सब कुशल मंगल से रहे, ये भाई आशा करी थे इसे बढ़ के और का खुशी हो सकता था कि सब क्यों नेकी मेरे से रहे। देखो बहनो, दिन महीना साल खुशी खुशी बीतत है, हम सबके प्यार बढ़त रहे और मने मने के काम ही आवे तबे सगरो सुख है। देखो ये वेदे कहा गवा है ना कि मानवता से बढ़ के कोनो धर्म नहीं और दुखी मने के सेवा से बड़ा कोनो पुण्य नहीं है। और देखो ईश्वर के बनाई है दुनिया में ना मने के सबसे ऊंचा स्थान मिला है, कहें से कि मने के जो चेतना है सबसे ऊंची है, सबसे ऊपर है, वो सबके दुख का समझ सकत हैं और सबके भाई दुख का काटे के प्रयास भी कर सकत हैं, मदद कर सकत हैं। तो आज है 8 मई जो कि विश्व रेडक्रॉस दिवस के रूप में मनावा जाता है। ये दिन रेडक्रॉस के संस्थापक और शांति के नोबेल पुरस्कार पाए वाले पहले मनई जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के मौके पर मनावा जाता है। तो मैंने देखो आज के दिन बहुत ही खास है ना, दिन का मानव के भाई उद्देश्य यही है कि जोन मनई कोनो बीमारी से, अकाल लड़ाई या कोनो आपदा से कि भाई सूखा आई गई या युद्ध हो गए है ना, उनमें चोटाई गए हैं लोग, तो उनके सहायता करे बदे है। तो देखो आज ना अपने

0: बारे में बहुत ही निक के जानकारी भी ले आए हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस पे। रेड क्रॉस के बारे में जानकारी देते हैं साकेत महाविद्यालय अयोध्या के रक्षा अध्ययन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं डॉक्टर अजय मिश्रा जी। आप सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के प्रभारी भी हैं और ये जानकारी हम टेलीफोन लाइन से प्राप्त की है, तो चलो सुना जाए इनसे।
1: मैं डॉक्टर अजय मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर महाविद्यालय जो सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड यूनिट है जिसके माध्यम से बच्चों में विनती का पाठ पढ़ाया जाता है। रेड क्रॉस मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। इस रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर हम आप सभी मित्रों से ये बताना चाहते हैं कि दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, जब भारत सैनिक मैदानों में तड़प रहे थे, जब इंसान की पहचान केवल इसकी वर्दी और सीमाओं से तय की जा रही थी, तब एक व्यक्ति ने कहने का साहस किया कि पीड़ा का कोई धर्म नहीं होता और मानवता की सीमा नहीं होती। वह व्यक्तित्व थे ट्रेनरी विमान। सन 1859 में दिल्ली के सोलसर्विनो युद्ध में हजारों सैनिकों घायल सैनिकों की सहायता के लिए जो मदद के अभाव में मर रहे थे आगे आए। इस भयावह युद्ध को देखकर विमान को मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस युद्ध को देखकर उनको जोर दिया। इस भयावह दी उन्होंने स्थानीय नागरिकों को संगठित किया, युद्ध भूमि में घायल सैनिकों की सेवा शुरू कर दी। इस समय उन्होंने जो विचार दुनिया को दिया वह आगे चलकर मानवता के सबसे बड़े वैश्विक आंदोलन का आधार बने। इसी भावना से जन्म हुआ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का, जिसने बाद में इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का रूप लिया। आज यह संगठन दुनिया के लगभग हर बड़े संकट में मानवता की अंतिम उम्मीद बनकर खड़ा दिखाई देता है। रेड क्रॉस केवल एक संस्था नहीं, यह पूरा के समय मनुष्य के भीतर जीव करुणा का प्रतीक है। इसका संदेश स्पष्ट है, हर घायल इंसान पहले मानव है, बाद में किसी देश धर्म या विचारधारा का प्रतीक। आज जब पूरी दुनिया युद्ध आतंकवाद महामारी प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों से जूझ रही है, तब रेड क्रॉस जैसे संगठनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, महामारी हो या युद्ध, रेड क्रॉस के स्वयंसेवक बिना किसी भेदभाव के सेवा में जुटे रहते हैं। रक्तदान शिविरों से लेकर प्राथमिक उपचार राहत सामग्री वितरण से लेकर युद्ध बंदियों की सहायता तक यह संगठन मानवता की रक्षा का सतत अभियान चला रहा है। भारत में ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, रक्तदान और सामाजिक सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया भय और असहायता से घिरी हुई थी, तब सेवा और सहयोग की भावना में ही समाज को संभाले रखा। इस रेड क्रॉस दिवस हमें केवल इतिहास याद करने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की मानवता को जगाने के लिए प्रेरित करता है। आज आवश्यकता केवल तकनीकी विकास की नहीं बल्कि संवेदन की समाज की भी है। यदि विज्ञान प्रगति देता है तो मानवता उसे दिशा देती है। आज के समय में सबसे बड़ा संकट हथियारों का नहीं संवेदनाओं के क्षण का है। जब समाज दूसरे के दुख को महसूस करना छोड़ देता है तब सभ्यता केवल बाहरी चरण बनकर रह जाती है। विश्वास में याद दिलाता है कि सभ्यता की वास्तविक पहचान संकट के समय इंसान द्वारा इंसान के लिए खड़े होने में है। हमें यह समझना होगा कि मानवता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सेवा सहयोग त्याग से जीवित रहती है। यदि एक यूनिट रक्तदान एक घायल की सहायता कर सकता है, एक पीड़ित परिवार को सहारा दे सकता है या संकट के समय बढ़ाया गया हाथ, यही वास्तविक कार्य है जो समाज को मजबूत करते हैं। आज इस रोजगार दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल दर्शक नहीं रहेंगे बल्कि मानवता की रक्षा के सहभागी बनेंगे, क्योंकि ये इतिहास लिख सकते हैं लेकिन मानवता भविष्य चाहती है और अंततः रक्त का रंग सबका एक है, यही संदेश रोजगार देता है।
0: श्रोतव्यनो कोनो भी दिवस मनावे के पीछे के उद्देश्य यही रहा था ना कि हम सब उकेर प्रति भाई सजग हुई सचेत हुई और इतने नहीं हमें ओका अपने व्यवहार में भी लावे है कि हमें सबके प्रति सेवा सद्भाव की भावना रखे के चाहिए। और देखो भले ही ना आज भाई तकनीक के जमाना है ना कितना समय बदल गया है, मुला मने का मने के कामे आए बहुत ही

0: बड़ा धर्म है। आज के समय में बड़ा बदलाव आई के भले ही शहर तो शहर ही मुला देखो, अब तो गांव-गांव में भी आधुनिकता के बहुत बड़ा असर देखे मिलत है। विकास तो बहुत नीक है मुला, अपने संस्कृति का अपने परंपरा का भी सहेज के हमें चले के चाहिए, नजरअंदाज नहीं करे के चाहिए। तो देखो आज एक और बहुत नीक जानकारी लाइन अपने कार्यक्रम में, ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकता का बढ़ता प्रभाव जानकारी देते हैं प्रतिमा पांडे बेनी, तो चलो यू को सुना जाए।
1: गाँव का देश कहा जाता है, आज भी देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। समय के साथ गांवों में भी आधुनिकता का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। आधुनिकता का मतलब केवल नई तकनीक अपनाना नहीं है, बल्कि सोच, जीवन शैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जब ग्रामीण लोग नई शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, तकनीक साधन और नए विचार अपनाते हैं तो उसे ग्रामीण आधुनिकता कहते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही गांवों का बहुत बड़ा महत्व रहा है और गांव को शहर से भिन्न बनाने वाले उनकी नीति और परंपराएं भी अलग रही हैं। प्राचीन काल से ही गांव जहां भारत की विशेषता रहे हैं, गांव में खुद की संस्कृति, रीति रिवाज, निर्भरता और रहन सहन रहा है, वहीं आज आधुनिकता के चलते गांव भी शहर की तरह बदलने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों व पद्धति में अनेक ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि सामाजिक बदलाव। पहले गांव के लोग अपने ही गांव में सीमित रहना पसंद करते थे, वे अपने गांव को ही सब कुछ मानते थे और वहीं पर अपनी कई पीढ़ी गुजार देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गांवों में रहने वाले लोगों की विचारधारा में बदलाव आया है तथा जहां रोजगार सुलभ हो वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज गांवों के आधे से ज्यादा युवक कृषि कार्य तक ही सीमित ना रहकर विभिन्न नए रोजगारों को अपना रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में भी ग्रामीण युवकों की भागीदारी अधिक देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ जहां गांवों में रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी, लोग मिट्टी और घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे, वहां आज लगभग सभी गांवों में ईंट के मकान बन गए हैं तथा गांव में ऐसे भी घर देखने को मिलते हैं जो कि शहर के घरों की तरह आलीशान होते हैं। गाँव में सामाजिक असमानता भी बहुत थी। पहले गाँव में स्त्रियों के ऊपर भी कई अत्याचार देखने को मिलते थे। स्त्रियों को गृह कार्यों के लिए ही उचित समझा जाता था, उनके शिक्षा की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आधुनिकता के इस बढ़ते दौर में आज स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। आज ग्रामीण स्त्रियां भी समुचित शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वे घरों तक ही सीमित ना रहकर नौकरी आदि भी कर रही हैं। पहले की अपेक्षा अब ग्रामीण स्त्रियों में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि परंपरा और संस्कृति की बात करें तो पहले गांवों के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को ही सर्वोत्तम मानते थे। वो परंपरा में ऐसे बंधे थे कि उनके लिए उनकी परंपरा ही सब कुछ थी। परंपरा को तोड़ने वाले व्यक्तियों को गांव से निकाल दिया जाता था, लेकिन आज गांव में लोग जागरूक हो रहे हैं, वे परंपराओं से ज्यादा मानवता को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे ही कृषि क्षेत्रों में भी आधुनिकता काफी बढ़ी है। जहां पहले कृषक हल व बैलों की सहायता से खेतों को जोतते थे व बोते थे, वहीं आज विभिन्न कृषि उपकरणों के कारण कृषि कार्य सुलभ हो चुका है। भारत में हरित क्रांति के पश्चात जिस प्रकार से ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है, उससे समय के साथ साथ श्रम भी बच रहा है। सिंचाई की व्यवस्था ने इसे और भी सुलभ बना लिया है। प्रत्येक गांव में ट्यूबवेल, तालाबों व नदियों से मोटर लगा पानी खींचने से वह पानी सिंचाई में उपयोग होता है, जिससे पैदावार भी बढ़ी है। अतः ट्यूबवेल, ट्रैक्टर व धान गेहूँ काटने की मशीनों के चलते किसान भी प्रसन्न है। खेतों से अनाज भी अधिक मात्रा में मिल रहा है और समय व श्रम की सबसे बड़ी बचत केवल आधुनिकता का सबसे बड़ा उदाहरण तो बिजली है। आज घर घर बिजली उपलब्ध है। सभी घरों में रातों में भी रोशनी रहती है। बिजली के द्वारा कठिन जीवन भी सरल हो गया है। बिजली गांवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज बिजली के ही दम पर गांवों में विभिन्न गृह उद्योग, लघु उद्योग व कुटीर उद्योग स्थापित हो रहे हैं। आज के समय में ग्रामीण स्त्रियां अपने खाली समय में विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं भी निर्मित कर रही हैं

जिससे उनका घर भी चल सके। विभिन्न प्रकार की टोकरियां, बुनाई, सिलाई, धूप बत्ती, फूल बत्ती आदि ऐसे अनेक साधनों के द्वारा रोजगार ग्रामीणों के घर पहुंच गया है। इन सभी के बीच सबसे बड़ा विकास परिवहन मार्ग में भी देखने को मिला है। जहां पहले लोग दूर दूर पैदल यात्रा करते थे, गांवों में कच्ची पगडंडियां होती थीं, वहां आज हर गांव में पक्की सड़क बन चुकी है। गाँव के समीप तक गिट्टी की सड़क तथा ईंटों की सड़कें भी बन चुकी हैं। आज गाँव में जाने के लिए हम किसी भी वाहन से वहां पहुंच सकते हैं। कई ग्रामीण कार व अन्य भारी वाहनों को भी खरीद चुके हैं। परिवहन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान भी ग्रामीणों का ही है। आधुनिकता के युग में ग्रामीण पुरानी पद्धति से यात्रा करना हो, बस, कार आदि से यात्रा करते हैं। राजनैतिक रूप से देखें तो पंचायत समिति के गठन के बाद गाँव में भी लोग राजनीति को जागने लगे हैं। वे सब स्वयं से विचार कर अपना नेता चुनते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण स्वयं प्रधान, जिला पंचायत आदि के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीति में ग्रामीणों की प्रबल भूमिका देखने को मिलती है। आज प्रत्येक घर में टीवी, मोबाइल, रेडियो जैसे संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीण अपने गांव में ही बैठकर देश दुनिया की हाल जान लेते हैं। वे मोबाइल का अच्छा उपयोग करना जानते हैं, वे समाचार में अपनी रुचि दिखाते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी आधुनिकता इंटरनेट भी गाँव में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। आज हर घर में स्मार्टफोन उपलब्ध है। लोग देश दुनिया में रह रहे अपने सगे संबंधियों से बातचीत कर रहे हैं। तो आधुनिकता के समय ग्रामीणों के पास भी आधुनिक इंटरनेट के साधन हैं। इतना सब होते हुए भी आज सबसे बड़ा असर ग्रामीणों की सोच में हुआ है। वे अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं। सेना, पुलिस आज देश सेवकों में ग्रामीण युवकों की सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं। आज ग्रामीण अंचलों में भी अच्छे अच्छे विद्यालय खुल रहे हैं, जिससे गांव में ही रहकर बच्चा नगर जैसी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। गांव में बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय आदि भी भारी मात्रा में खुल रहे हैं। इससे गांव के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गाँव में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि भी उपलब्ध हैं। जहां पहले लोग बीमार होते थे, उनका इलाज नहीं हो पाता था, गर्भवती स्त्रियां भी कई बार अपने बच्चे को खो देती थीं, वहां आज कम ही समय में एम्बुलेंस गांवों में पहुंच जाती है और निःशुल्क उनके उपचार की व्यवस्था कर पाती है। उन्हें कई विकास कार्यक्रमों के तहत विभिन्न अवसर भी सरकार द्वारा दिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले चूल्हे से उत्पन्न धुएं व प्रदूषण को बचाकर प्रत्येक घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। तो गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों, समूहों द्वारा भी आधुनिकता के ही बल पर गांव और नगर में ज्यादा अंतर नहीं रह गया। आज ग्रामीण आधुनिकता का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, शिक्षा, रोजगार, घर, समाज, देश, परिवार, कृषि, राजनीति, सभी प्रकार से ग्रामीण आधुनिकता के इतने फायदे हैं, तो कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी है। आधुनिकता के चलते तीज त्योहार पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। आधुनिक परिवेश में त्योहारों की परिभाषा पारंपरिक आस्था और सामुदायिक जुड़ाव से हटकर अब उपभोक्तावाद, दिखावे और डिजिटल जुड़ाव की ओर स्थानांतरित हो गई है। अब त्योहार केवल धार्मिक आयोजन न होकर मनोरंजन, खरीदारी और ब्रांडेड उत्पादों के प्रदर्शन का जरिया बनते जा रहे हैं। शादी विवाह पर भी आधुनिकता का प्रभाव हो गया है। लोग अपने रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं। जहां लोग पहले पारंपरिक गीत गाते थे, जैसे हल्दी रसम, विदाई गीत, बासी भोजन करते समय सुबह गारी गाती थी महिलाएं, ये सब विलुप्त सा हो गया है। अब तो हर रस्मों में आधुनिक गीतों पर नाच गाना पसंद करते हैं। लड़का लड़की एक ही हाल बुक कर लेते हैं और साउंड पर आधुनिक गाने लगाकर नाच गाने हुड़दंगई करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब आते हैं खेती किसानी के प्रभाव क्या हैं। जैसे कि किसान आजकल अपनी फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन की उर्वरकता कम हो रही है। आज प्रत्येक घर में मोटर ट्यूबवेल लग जाने से भूमिगत जल का भी क्षरण हो रहा है। बेवजह जल उपयोग से कई जगह सूखा भी पड़ रहा है। आधुनिकता के बढ़ते, जहाँ पहले गाँव में हरियाली हुआ करती थी, वे शांति

0: व प्रदूषण रहित वातावरण के लिए जाने जाते थे, वहीं आज कई गांवों में फैक्ट्रियां बनने लगी हैं। वहां भी प्रदूषण फैलने लगा है। गांवों में भी वनों को काटकर गांवों को बढ़ाते जा रहे हैं। जहां पहले प्रत्येक घर में पशुपालन होता था, आज गांव वाले अपने जानवरों को छोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार से कई ऐसे दुष्परिणाम भी आधुनिकता में देखने को मिले हैं। पर आधुनिकता वरदान है, इस वरदान का गलत ढंग से उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी आधुनिकता को अपनाने पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आधुनिकता अपनाइए, पर अपनी प्रकृति का क्षरण करना उचित नहीं है, क्योंकि गांव इस देश में रहने वाले 68.80% लोगों का आश्रय है और इसीलिए भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिकता का बढ़ता प्रभाव विषय पर जानकारी देते रहे प्रतिमा पांडे बेनी। उम्मीद है कि आपका जानकारी बहुत नीक लाग हुई और समय हो चला है छोटे से अंतराल के, तो मिले थे संदेश के बाद, लेकिन आप सब कार्यक्रम में बनी रही है।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
1: से हाजिर है आपके रेडियो सखी आरती। देखो बहनो, जोन अपन ये भाई कार्यक्रम है ना, इसमें हम सब कितना नीक नीक जानकारी सबका सुनवावा जाते है ना, लेकिन अब बनी भाई अपने जन सखी ही ने इंतजार करते हैं कि जानकारी के बाद तो हुई गए, तो कहे ना खूब नीक गीत गुने है, तो चलो भाई सुना जाए सुंदर सा गीत।

पद्मा गिडवानी और सखीन की आवाज में सुंदर सा गीत आप सब सुनी। मैंने देखो घर से लेके बहरे तक ना हम कहीं भी रही और कहीं भी जाई हमें खुद के सुरक्षा के ध्यान रख देवे के चाहिए। कहे से कि देखो कहावत है ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो भाई देखो ऐसा हमें नहीं करे चाहिए बिल्कुल भी लापरवाही। तो आजकल देखो कहीं भी हम जाए थे हाटे पे जा रहे ना तो कितना भीड़ रहा था सड़की पे, जान लो कि राह चलब दूभर रहा था, वही में कितना गाड़ी मोटर सब आवा जावा करते। लेकिन देखो अपन सरकार ना हर चीज का व्यवस्थित करे है कि कोनी तरफ से हम गाड़ी ले जाई है ना कोनी तरफ से पैदल चले है, तो हमें ध्यान रखे चाहिए कि जब भी हम पैदल चली या साइकिल से चली तो हमेशा बाएं की तरफ से चली है ना। और कुछ भाई जो सड़क सुरक्षा जो सप्ताह चलते भाई ओकरे बारे में सबका जागरूक करे के खातिर है ना कि जो नियम बनावा गया है सड़क पे चले के ना उस पे हमें ध्यान देवे के चाहिए। जे भी भैया गाड़ी मोटर चलावे थे तो हेलमेट पहने है ना, अगर कार पे है तो अपन सीट बेल्ट जरूर बांधे है ना, और छोटी छोटी बात का भाई ध्यान रखे, कभी भी कोनो भी नशा के हम गाड़ी न चलाई एक जरूर हमें ध्यान रखे चाहिए। और अक्सर देखो हम देखे थे ना लोग जो है गाड़ी चलावत है चाहे मोटरसाइकिल है चाहे कार है तो पे फोन पे बात भी करत रहा थे, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी न करे। कहे से देखो हमारा दिमाग बट जाता है और हम जो है अपने दिमाग का एक तरफ न लगा पाए तो ऐसे में दुर्घटना के शिकार हो जाए थे। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें। और चले जब भी ना जो छुटवार बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उन्हों का ध्यान में रखें, वैसे भी इनके लिए भाई सरकार जो है एक जो फुटपाथ बनावा जाते हैं ना उस पर चले चाहिए लोगों का जो दिव्यांग लोग हैं सबके सुरक्षा का ध्यान रखे सरकार अपन हर काम कर रहे थे। लेकिन हमों का एक आदर्श नागरिक हो कि भाई अपन कर्तव्य निभावे के चाहिए, सबका जो नियम कानून है उसका जो है पालन करे के चाहिए, तभी देखो हमहूँ सुरक्षित रहा और जे और भी है सब सुरक्षित रही है ना। आए दिन देखो कबो सुना थे कि भाई यहाँ गाड़ी लड़ गए कितना लोग जो है भाई खत्म हो गए, तो ऐसा ना हो एक बदले में ध्यान रखे चाहिए। और देखो अब चली थे आज शुक्रवार तो भाई देखो शादी ब्याह के मौसम है, वैसे भी जो सखी है ना सजे सवरे के बहुत शौकीन होती है, भाई सबका इच्छा होता है कि भाई सुंदर दिखाई। तो आज हम भाई लेके आए पपीते से जो फेस पैक बनावा जाता है उनका बनावे और चेहरा का सुंदर बनावे। देखो बाजार में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बहनों ना जो उनकी भाई भरा पड़ा है, जो उन्हें कहा था कि भाई तुम्हें खूब सुंदर बनी बोले, लेकिन उनमें कितना पैसा लगा था कोनो गारंटी भी नहीं है कि उसे मने कि चेहरा लंबे समय तक नीक रही है ना। तो अपने रंग रूप का निखारे खातिर कहूँ बाहर जाए की जरूरत ना, ज्यादा पैसा भी फूकने की जरूरत ना है, अपने रसोई में हर चीज मौजूद है, तो बस खाली थोड़ा सा सचेत रह के जरूरत है। देखो फल फ्रूट हम लोग खावे करे थे ना तो पपीता ऐसा चीज है ना जो उनकी बहुत ही फायदेमंद होते सेहत के लिए भी, अगर एक हम भाई थोड़ा सा एमे और कुछ डाल के जैसे दूध है शहद है मिलाए के अगर एक अपने चेहरा पे लगाई है ना हाथ पैर पे लगाई गर्दन पे लगाई तो ये बहुत ही अच्छा काम करत है। तो करे का है कि पपीता के गूदा का निकाल के उसका मसल लें चाहे मिक्सर ढाबे कर तो हमें पीस लें, फिर ओका में थोड़ा सा दूध मिला लें उका अपने चेहरा पे लगावे हाथ पैर पे लगावे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे 10 से 15 मिनट, फिर ताजे पानी से धो लें। उसके बाद देखो चाहे आप इनमें जो है दूध भी मिला सकते हैं दही भी मिला सकते हैं शहद भी मिला सकते हैं, सबके अलग अलग प्रभाव रहा थे, नींबू भी मिला सकते हैं, नींबू मिला से जो दाग धब्बा होते वो दूर हो जाते। तो भाई देखो सब छोटे छोटे उपाय करके ना हम अपने रंग रूप का निखार सके, तो खाली चेहरा नहीं का हाथ पैर में अक्सर देखो भाई जो हाथ के जो कोहना होता है वो काला पड़ जाता है, वो पे भी लगाए के अपन जो है का इस्तेमाल कर सकती थी। अगर लगाई है तो भाई सुंदर दिखिए, भाई देखो सुंदरता सबका अच्छा लागत है ना, कोनो भी अच्छी चीज़ हम देखी थी तो भाई अच्छा लागत होगा देख के। तो ये सब छोटे छोटे उपाय का अपनावे और भाई सुंदर बनी रहा है। तो घड़ी की जो सुई है ना टिक टिक करत है, हमें याद दिलावत है कि अब कार्यक्रम से विदा लेवे के समय हो गए हैं, तो फिर अगले कार्यक्रम में निकले।

0: गीत और जानकारी के साथ हम फिर मिलो, तब तक के लिए आरती का देवनमति नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगना। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। एक सूचना, आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता इस प्रकार है, आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 से 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 जीएसटी के साथ और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी को ₹266 जीएसटी के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 3:01 हुए हैं, तो आइए एक बार फिर हम जुड़ते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो।
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवा?

0: आते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी।
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे, वो दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन? कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है,
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: पालदा नाका इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, छप्पन दुकानें।
1: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, वो साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पर थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती है ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: रेडियो अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना सही
0: है। बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, कितने पर कैसा मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना
0: है। हाँ बताइए, कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सुराया लग जाए नजरिया है, लता जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिक्की से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा ये मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से जी। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: जानकारियां भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। मैं पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं, रेडियो पे जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है, पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ
1: जी हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनती यही मैं
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले की आवाज में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत। पान

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात तो है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा?
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है,
1: शायद
0: क्या बात
1: आपको
0: है?
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
0: सीख रही हैं
1: अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
1: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
0: जी।
1: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये बात आपने,
1: कुछ भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है,
1: वो जैसे बोलती थी थाई जोर से मारो, तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: तो अपूर्णता है थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसी ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: पर
0: सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
1: इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है
0: जी,
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
0: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी,
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, ता थई तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे बहुत अच्छी लगी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: अच्छा सा और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: मैडम मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: निंदाई खुदाई है, तो को चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी है
1: ना। है
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी, तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का,
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके,
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वानी।

0: टाइम
1: कुछ लाते हैं जी। तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
0: फिर
1: होता
0: वहाँ
1: होगा?
0: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध कर खिला देते हैं।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
0: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है,
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी, जी क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: बोल बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: मैम बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उसे एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी? आखिर मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से

करना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा, जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं

जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूं,

मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो, इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर ये अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का के जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ दे हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। ओस में भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीरव निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी।

ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां

चौखट से ढीली हो गई। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हो। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलट कर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगरगी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त शिखा मौर्य। और दोस्तों, आप सभी को शिखा मौर्य का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और इसी के साथ आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के युववाणी कार्यक्रम में क्या होगा खास। चर्चा होगी विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, साथ ही अगली चर्चा का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। साथ ही गीत संगीत के साथ स्थान सेगमेंट में आज हम सैर करेंगे अजमेर शहर की। और दोस्तों, आज है शुक्रवार तो शब्दावली सेगमेंट में नए शब्दों के माध्यम से हम अपनी बोलचाल की भाषा को बनाएंगे और भी स्ट्रांग। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए शुरू करते हैं चर्चा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। मित्रों, मानवता को जीवित रखना एक ऐसा संदेश है जो आज के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत प्रासंगिक है। जो युद्ध, आपदा, महामारी, भुखमरी और अन्य आपात में बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करता है। वहीं यह संस्था किसी भी जाति, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता से सभी की मदद करती है। दोस्तों, वहीं बात करें तो विश्व रेडक्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई को रेडक्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूना की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेडक्रॉस के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। मित्रों, रेडक्रॉस दिवस का उद्देश्य लोगों को मानव सेवा, आपदा राहत और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, साथ ही युवाओं को सहानुभूति व समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है। मित्रों, वहीं बात करें तो विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में की गई थी। वहीं विश्व रेड क्रॉस दिवस सेवा, साहस, करुणा और मानवता का प्रतीक भी है और हेनरी ड्यूना द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज लाखों लोगों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान कर रहा है। वहीं वर्ष 2026 में विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी इस बात को व्यक्त करती है कि संकट में भी गरिमा और करुणा अपनाना ही हमारा सच्चा धर्म है। मित्रों, इसी के साथ आज हम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मना रहे हैं जो 8 से 12 मई तक मनाया जाता है। दोस्तों, सड़क यातायात दुर्घटनाएं दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता का एक कारण है। वहीं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह इस बात पर प्रकाश डालता है कि पैदल चलना और सुरक्षित रहना सिर्फ दुर्घटनाओं से बचना ही नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ तरीकों को चुनने के लिए प्रोत्साहित भी करना है, जो परिवहन के स्वस्थ, टिकाऊ और न्यायसंगत तरीकों में बदलाव में मदद करते हैं। मित्रों, वहीं बात करें तो संयुक्त महासभा ने इसे 2005 में अपनाया था। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा उपाय हमें यह बताता है कि सड़क पर चलते समय या साइकिल चलाने के लिए समर्पित लेन, फुटपाथ और क्रॉसवॉक का इस्तेमाल अवश्य करें। अपने वाहन को सुरक्षित रखने के लिए आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करें। वहीं सुरक्षित गति के साथ अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा पर ही चलाएं और उससे ऊपर न चलाएं। साथ ही तेज गति से वाहन चलाने से बचें और शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी न चलाएं। दोस्तों, WHO के अनुसार सड़क यातायात के चोटें विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनी हुई हैं, जो हर वर्ष 50 मिलियन अन्य लोगों को घायल करती हैं। ऐसे में परिवहन योजना में पैदल चलने और साइकिल चलाने को एकीकृत करके वैश्विक योजना का उद्देश्य 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करना है, जो सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देता है। मित्रों, ये थी चर्चा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। और इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग। फिल्म है ये दिल है मुश्किल, लिरिक्स है अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत से सजाया है प्रीतम ने और गाने को प्यारी सी आवाज दी है अमित मिश्रा व शिल्पा राव ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब से लेकर रात 11:10 तक आप रहेंगे विवेकानंद के साथ। फिलहाल वक्त है शाम के 5:18 का। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये गीत और आइए आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जहां स्थान सेगमेंट में सैर करने चलते हैं अजमेर शहर की। दोस्तों, अजमेर शहर राजस्थान के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है जो अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और साथ ही धार्मिक परंपराओं व सांस्कृतिक महत्व को निभाता हुआ अजमेर शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल भी है। दोस्तों, वहीं अजमेर शहर के इतिहास की बात करें तो यह राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 135 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। वहीं अजमेर शहर की स्थापना की बात करें तो अजमेर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के प्रथम पुत्र अजयपाल चौहान द्वारा की गई थी। दोस्तों, अजमेर शहर अपने प्राकृतिक सुंदरता और कलात्मकता के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। वहीं मित्रों, राजस्थान के अजमेर शहर में ही स्थित अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि मुसलमानों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यह दरगाह मोहिनुद्दीन चिश्ती के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनवाई गई थी। इस दरगाह का निर्माण मुगल शासकों द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा अजमेर का तारागढ़ किला, जो कि चौहान शासकों से जुड़ा हुआ है, और इस किले का निर्माण सम्राट अजयपाल चौहान द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी। यह प्राचीन किला आज भी अपने सदियों पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। साथ ही दोस्तों, बात करें तो अजमेर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किशनगढ़ किला भी प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर 9 ग्रहों का मंदिर भी है। इसके अलावा इस किले में एक शानदार झील भी है जहां पर आप कई दुर्लभ और विदेशी पक्षियों को देख सकते हैं। वहीं मित्रों, बात करें तो हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प कला का नमूना 2.5 दिन का झोपड़ा शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में है। इसकी समृद्ध और महीन नक्काशी श्रम साज्य की कला झलकाती है। मित्रों, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में करवाया था। साथ ही दोस्तों, यदि आप सूर्यास्त का मनोरम दृश्य यहां से देखना चाहते हैं तो राजस्थान के अजमेर में स्थित आना सागर झील देखना बिल्कुल न भूलें। यहाँ पर सूर्यास्त का मनोरम दृश्य वास्तव में अत्यंत मनमोहक है। झील के आसपास कई मंदिर भी हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। वहीं फॉय सागर झील भी अजमेर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इस झील का निर्माण 1892 में अजमेर में पानी की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, अजमेर के स्थानीय बाजार भी पर्यटकों के लिए अत्यंत लोकप्रिय हैं। बाजार अपने स्मृति चिन्ह और वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं खाद्य व्यंजनों की बात करें तो अजमेर शहर के मशहूर पकवानों में केर सांगरी व दाल बाटी चूरमा से लेकर सोहन हलवा, बिरयानी, घेवर व केसर फिरनी है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं किसी यात्रा की तो अजमेर शहर एक बार जरूर आइए। दोस्तों, ये था स्थान सेगमेंट में अजमेर शहर की यात्रा और मित्रों, अब फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
7: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
0: अंतराल के बाद आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा का।

कार्यक्रम युवाणी में। मित्रों इसी के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है सिंह इज किंग, गायक है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल, लिरिक्स है मयूरपुरी का और संगीत से पिरोया है प्रीतम ने।

दोस्तों फिल्म सिंह इज किंग से अभी आपने सुना ये गीत और अब बारी है शब्दावली की, जिसमें हम चलिए जानते हैं अंग्रेजी और हिंदी के कुछ शब्दों को, जिसमें हमारा अंग्रेजी का पहला वर्ड है एम्बिशन, AMBITION, जो एक नाउन है जिसका अर्थ होता है महत्वाकांक्षा, और इसका सिनोनिम है डिजायर, एंटोनिम होगा लेजीनेस। और एम्बिशन को हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हिज एम्बिशन इज अल्टीमेटली टू रन हिज ओन बिजनेस, उसकी महत्वाकांक्षा अंत में अपना खुद का कारोबार चलाने की है। वहीं हमारा दूसरा वर्ड है इंस्पिरेशन, INSPIRATION, जो एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रेरणा, सिनोनिम होगा मोटिवेशन और एंटोनिम होगा डिप्रेजेंट। और इस वर्ड को हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, सी हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू अस ऑल, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा रही है। दोस्तों इसी तरह हमारा तीसरा वर्ड है हेसिटेट, HESITATE, जो कि वर्ब है जिसका अर्थ होता है हिचकिचाना, और इसका सिनोनिम होगा वेवर और एंटोनिम होगा एडवांस। इस वर्ड को हम इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, डोंट हेसिटेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करने में संकोच ना करें। मित्रों हमारा इंग्लिश का अगला वर्ड है वायलेंस, VIOLENCE, जो कि नाउन वर्ड है, इसका अर्थ होता है क्रूरता, सिनोनिम है इसका फ्यूरी और इसका एंटोनिम है मिल्डनेस। इसको हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, द जेलर डिड वायलेंस टू प्रिजनर्स, जेलर ने कैदियों के साथ हिंसा की। दोस्तों आज का हमारा अंतिम और हिंदी का शब्द है आनंद, जिसका विलोम है वेदना और इसकी पर्यायवाची है उल्लास। इसे हम इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत ही आनंद आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के कुछ शब्द, और इसी के साथ आइए सुनते हैं एक गीत। फिल्म है जीनियस, गीतकार है कुमार, संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने, और गाने को प्यारी सी आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये गीत और अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम से विदा लिया जाए। लेकिन उससे पहले आपको चलते चलते बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या होगा खास। चर्चा होगी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, साथ ही अगली चर्चा होगी महाराणा प्रताप जयंती पर। वहीं दोस्तों, हमारी धरोहर सेगमेंट में रूबरू होंगे शांति निकेतन से, साथ ही गीत संगीत के साथ आर्थिक जगत क्षेत्र से जानेंगे डेफ अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए गीत संगीत और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल, और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त शिखा मौर्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीववाणी एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 5:30 और 32 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक।

0: संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए मुन्ना लाल और साथियों की आवाज में ये भजन।

0: दवा बारू जय हुए तगादा।
1: घर के खर्चा बहुत भवा बारू जय हुए तगादा।
0: करित नौकरिया हम हूँ

सारी पढ़ाई। रत्नेश द्विवेदी और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। पद्मा गिरवानी और सखियों की आवाज में सुनिए ये नकटा।

0: पद्मा गिडवानी और सखियों की आवाज में भी हम सुन रहे थे ये नकटा। कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
1: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91 61 877 347।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
2: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए

0: केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
0: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed.

निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 जीएसटी के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को ₹266 जीएसटी के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार तक प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। यह सूचना समाप्त हुई।

0: अब सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के संबंध में सूचना सुनिए। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376804090। नंबर एक बार फिर से सुन लें 7376804090। समय याद रखिएगा 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। श्रोताओं अब हीट वेव से संबंधित सूचना सुनिए। अधिक गर्मी वाले समय विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य सूर्य की सीधी रोशनी में जाने से बचें। नंगे पैर बाहर न निकलें। अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग से यथासंभव बचें और बासी भोजन का प्रयोग न करें। बच्चों और पालतू जानवरों की को खड़ी गाड़ियों में न छोड़ें। गहरे रंग के भारी और तंग कपड़े न पहनें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तब अत्यधिक शारीरिक परिश्रम का कार्य न करें। अधिक गर्मी वाले समय में खाना बनाने से बचें। रसोई वाले स्थान को ठंडा रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। शराब चाय कॉफी कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह शरीर में निर्जलीकरण करते हैं। और अब गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना के अनुसार मोहम्मद कमर पुत्र मोहम्मद यूसुफ ग्राम गुलिरिया थाना नूरिया हुसैनपुर पीलीभीत हाल बता रूमी भट्टा जमुनिया मऊ थाना कोतवाली रुदौली अयोध्या सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी रवीना 6 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता है। लापता रवीना की उम्र लगभग 28 वर्ष कद 160 सेंटीमीटर शरीर सामान्य रंग सांवला चेहरा गोल आंख और बाल सामान्य और काले हैं। लापता होने के वक्त रवीना ने गुलाबी रंग का सलवार और काले रंग का दुपट्टा और पैर में चप्पल पहन रखी थी। जिस किसी को भी लापता रवीना के बारे में कोई सूचना मिले या जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे स्थानीय सूचनाएं। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम शाम सुहानी का। उसके पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
0: कार्यक्रम शाम सुहानी में मैं हूं आपके साथ विवेकानंद। आवाज किशोर कुमार की, फिल्म है याराना, संगीत राजेश रोशन का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी, हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 6:20 होने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से

0: उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विक वृद्धेः आईएमएफ इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विक वृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
1: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधि दलस्य प्रमुखान संबोधयन आसीत।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90वें वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
4: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव के।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: राजेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाज में ये सुनिए।

अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, प्रचार माध्यमों से हीट वेव यानी लू के संबंधित जानकारियों के प्रति सतर्क रहें। चेतावनियों को ध्यान से सुनें। हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचाने। यदि उपरोक्त किसी भी लक्षण एवं हीट रैश यानी घमोरिया और हीट क्रैम्प यानी मांसपेशियों में ऐठन का अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 6:45 और 5 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम कृषि जगत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: पंचो जय हिंद। बुजुर्गों के हम करी सम्मान, बुजुर्गों के हम करी सम्मान, और ई है हमारे देश के अभिमान। पंचो आज है हम आप सबसे चर्चा करब बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करे। पंचो अपन परिवार के साना है बुजुर्ग, और आज मन ही परिवार में अपने आप का अकेला महसूस कराता है, चाहे वो समय का लेके देखा जाए या ये भाग दौड़ भरी जिंदगी का लेके। लेकिन जोनी मेरवा से हाथे के देखा जाए तो पांचों उंगली बराबर नहीं होते, ठीक वही मेर से हर क्यों के सोच इच्छा व मान सम्मान अलग अलग मेरवा से है। हर क्यों नीक नहीं हो सकत और हर क्यों गलत भी नहीं हो सकत। पंचो यह सोरहवाना सही हुआ है कि कईयों जगह पर बुजुर्ग के हालात बहुत दर्दनाक देखे का मिलत है। मोला भाई देखो, हम तो जाने थे कि हमें सबका जहाँ तक हो सके अपने बुजुर्गन के सम्मान करे के चाहिए, काहे से जैसन हम सभी बन के साथे करें ठीक वही मेरे वैसे अपन आवे वाली पीढ़ी भी हमारे सबके साथे करे। जो न अपने जीवन काल में है मैं अपने सबके बड़े अपने लड़कन बजे सपना संजोए रहे, आपन सुख भुलाए गए, उनका आज दर दर भटके का पड़ता है। ये मान के चलो कि मजबूरी बस उनका ये लागता है कि हम नौकर के मेरवा जियता हन, लेकिन यस उनके दिल मनाई हुए के चाहिए और हमारे सबका उनके प्रति यस व्यवहार नहीं करे के चाहिए, तब ये संभव हो सकत है कि उनके सोच बदल सकत है और अपन हम सभी कर्तव्य के पालन करत भय उनके साथे उनके जो जरूरत है वो का हम सभी पूर करी, उसे का होते हमें सबका पूरा आशीर्वाद मिले और हम सभी आगे बढ़ के अपने जिंदगी में चार चांद लगा सके थे। और आज हम सब पश्चिमी संस्कृति के होड़ में भागत चला जा रहा है, वही के बदौलत ये हमें सबका मिलाता है। पंचो हमें सबका नहीं भूले के चाहिए कि हम अपने आवे लड़कन के वह बुजुर्ग के प्यार संस्कार दुलार स्पर्श और आशीर्वाद से वंचित कर चला जाता है। भाई देखो हमें सबका चाहिए कि जितने आशीर्वाद प्यार दुलार मिले उतने हम सभी जो है खुशी के माहौल रहे, अपन सबके जो मन है अपने लड़कन के जो मन है वो स्वस्थ रहे। देखो पहले रखा रहा कि जो दादा बाबा रहे अपने जो नाती पोते रहे उनके मेरे मेरे के कहानी के माध्यम से हर मेरवा से उनका आगे चुनौतियों के सामना करे बदे सिखावत रहे बतावत रहे, और लड़के वही सब सोच के आगे बढ़ के अपने जीवन के जो चुनौती है वो के सामना कीन और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन। ठीक वही मेरे से अपने सबका कहा जाता है ना कि बड़न के आशीर्वाद लेके आगे बढ़त रही तो सफलता अपने सबके कदम जरूर चूमे। बहरे से हम केतरो हमका सबका प्यार मिल जाए मगर संस्कार दुआ व आशीर्वाद तो अपने हर के हो मातारी बाप से ही पावत है और मिलत है। ये हमेशा देखे के मिला कि जब से हम सभी बुजुर्ग जो अपन बुजुर्ग हैं उनके इज्जत कम करे लाग हैं जे के करत हुए हर के हो तो नहीं ऐसा है, तब से अपने दामन में दुआ का कम और दवाई के ज्यादा भरे लाग हैं। तो यही मारे अपने सबका मन से ज्यादा दुआ लिए का है। सिर्फ ज्ञान भय से ही बुद्धिमान नहीं माना हम सभी बना जा सकी था, बल्कि बड़न के प्यार आशीर्वाद मार्गदर्शन यक यस गहना है जो जीवन में बहुत काम आवत है। यही मारे हमें सबका अपन संस्कार नहीं भूले का चाहिए और अपने लड़कन का संस्कार के बारे ले जाए का भाई हमें सबका, नहीं तो होए का कि कहा गवा है ना कि जैसी संगत पाइए तैसो ही फल दीन। तो हम सभी जैसे करब वैसे हमारे सबका मिले आगे चल के, हम जैसे बिया बोब वैसे पाऊब, हमें सबका कुछ

0: नाही करे का है चाहिए पावे बदे हम सभी तैयार रही और तैयार रहे कब परे यही मेरा तैयार रही कि जहिया नीक करी नीक पाई यही मारे आपस सोच बढ़िया रखे का है अच्छा दिए वो अच्छा करे बदे अपने सबका करे का है ताकि आगे आने वाला समय भी अपने सबके साथ ही अच्छा हुए के वारी अपने सब ही बढ़ी ये हमारे सबके कर्तव्य बनत है और जब हम अपने संस्कार में ये सब अमल में लाऊं तब ये सब संभव हो सकते ये तो बात ही रही अपने बुजुर्गन के सेवा और सम्मान करे का लेकिन साथ अगर हम सब ही अपने खान पान पर भी साथ ध्यान ना दिए अपने बुजुर्गन का भी खान पान पर ध्यान ना दीजिए तो भाई वह से अपने सबका दिक्कत का सामना करे के पड़े तो खान पान बदे अपने सबका खेती बाड़ी के बारी जाए के पड़े और खेती के बात की जाए तो अपन खेती तब संभव हो पाए जैसे हम सभी संतुलित आहार ली थी तो स्वस्थ और तंदुरुस्त रही थी ठीक वैसे ने अगर अपन खेत जो है उर्वरा शक्ति से भरपूर रहे तब वो जो है हमें सबका पुरहर लाभ दे यही हमारे अपने सबका खेती में है जो खाद पांसा है उर्वरा शक्ति का ज्यादा ना प्रयोग करे का है रासायनिक खाद का उपयोग ना करे का है अपने सबका हरियर खाद का इस्तेमाल ज्यादा करे का है अपने खेतन में खाद पैदा करो अपने खेतन में रहे यही हमारे देखा आज एक बात कही लेके आए हैं कि हरी खाद उगाए लाभ उठाए यही विषय पर बतावत है डॉक्टर प्रभास शुक्ला जो उनकी कृषि विशेषज्ञ है शुक्लहिया महामाबिका प्रोध्या से और उनसे बतवाता है प्रभाकर शुक्ला भैया तो चलो ये नहीं सजाना जाए कि कैसे लाभ ले जाए हरी खाद उगाए की
1: पंचो आज अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर प्रभास शुक्ला भैया आप कृषि विशेषज्ञ हैं आपके घर है शुक्लहिया महावा तहसील बीकापुर जनपद अयोध्या सबसे पहले डॉक्टर प्रभास भैया आपके आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत बाय
2: धन्यवाद सर
1: स्वागत करें के साथ ही हम अपने पंचन का बतावत चली आज अपनी बातचीत का जो विषय है हरी खाद उगाएं लाभ उठाएं तो खेती किसानी के काम जो होते भैया खाद उर्वरक पर ही निर्भर होते हैं और हम किसान पंच जोन हैं वे अपने खेती में अच्छी से उपज पावे के लिए तमाम मेयर के खाद है उर्वरक है या के प्रयोग नियमित रूप से करवे करत हैं अब बात आवत है हरी खाद के अगर तो ये हमारे खेती के लिए कितना उपयोगी है थोड़ा सा हमारे पंचन का पहले परिचय कराऊं
2: जैसे आज कल की स्थिति ये हो गई है मृदा तो जो है उत्पादन तो कृषि क्षेत्र में जो भी फसल के उत्पादन हो रही है उत्पादन तो अच्छा हो रहा है लेकिन जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो पोषक तत्व तो उसमें पाए जाते हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं
1: अच्छा
2: पैदावार तो अच्छी पा रहे हैं किसान और उस पर और जो है जो फसल अनाज में जो है जो भी गुणवत्ता रहती है वो धीरे धीरे कमी आ रही है
1: अच्छा
2: उसका कारण क्या है कारण ये है कि जो है इस समय जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उससे हमारे जो उससे यूज करने से हमारी जो मृदा है वो प्रदूषित होती जा रही है
1: जी
2: इसके लिए जो है पहले भी होता रहा है आज के 20 साल पीछे जाएंगे आप तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे सनई ढेंचा इस समय बोते थे हरी खाद
1: बिल्कुल
2: इस समय धान लगाने वाला समय आ रहा है जून जुलाई में लगेगा गेहूं कटने के बाद जो है खेत की जुताई करके हरी खाद की बुआई कर देते थे
1: जी।
2: हरी खाद में जैसे जो है सनई हो गया ढेंचा हो गया मूंग हो गया उड़द हो गया ये जो हरी फसलें होती हैं इनकी बुआई कर देते थे बुआई करने के बाद जो है लगभग 40 से 50 दिन बाद वो जो है पानी भर के उसमें जो है फलेवा लगा देते
1: अच्छा।
2: थे उससे क्या होता था वो जो खेत की उर्वरा शक्ति थी उसमें बढ़ोतरी होती थी और जो है काफी सारे पोषक तत्व तो कार्बनिक पदार्थ जैसे मिट्टी की संरचना और जो है कई पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो है उसे पौधों को प्राप्त हो जाते थे
1: मतलब ये प्राकृतिक रूप से ही हमारे माटी में आ जाता रहा
2: जी जी जी और जैसे इस समय क्या हो रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो जो है रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उसमें जो कार्बनिक जो है पदार्थ मिल नहीं पा रहा है
1: जी
2: और इतना ज्यादा इस समय यह है किसान गौ पालक तो लोग हैं लेकिन 50% ही किसान गौ पालन करते हैं
1: जी
2: जैसे गौ पालन करते हैं तो उसमें जो है गोबर की खाद खेत में पड़ती है तो उसे अच्छा फायदा हो जाता किसानों को
1: बिल्कुल ये कहा भी गवा रहा है कि पशुपालन और खेती
2: जी
1: ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अब खेती में हमें अच्छी उपज लिए का है अच्छी आमदनी लिए का है वो गुणवत्ता परक हमें उपज लिए का है तो हमें जो ना देसी तरीका है परंपरागत रूप से जो खाद उर्वरक रही हैं इनका अपने खेते में डाले की जरूरत है और ये बात सही है कि अब हर घर में देखा जाए तो शायद ही पशुपालन होते हुए अगर है तो थोड़े मोड़ा रहेगा
2: हाँ तो उतना जैसे उस तरीके से जो है खाद का उत्पादन घर में नहीं हो पा रहा है इसलिए

0: जो है किसान को जो है इस समय जो खेत को खाली छोड़ देते हैं, खाली ना छोड़कर इस समय जो है ढैंचे की बुआई, सने की बुआई, जो हरी खाद की बुआई है उसको कर दें। एक जब धान लगाने से पहले जो खाद का उपयोग किया जाता है रासायनिक खाद का, उसको नहीं डालना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यूज करना पड़ेगा उसको।
1: बिल्कुल, यह तरह से उनका एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी जो

0: भी हरी खाद वाली फसल आप बताओ फिर सनई रही जा, अगर इनके बुआई करे है हमारी किसान पंच का,
1: जी
0: तो वो करे लिए समय का है थोड़ा सा, कैसे बुआई करे के बाद कुछ बता दी।
1: जैसे जो है गेहूं कटने के बाद एक बार जुताई कर देना चाहिए। जुताई करने के बाद जो है मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो जाए, अनुकूल होने के बाद जो है उसमें सिंचाई करके और 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर,
0: अच्छा
1: अपने यहाँ बोला जाता है एक हेक्टेयर में 10 बीघा बोला जाता है,
0: जी
1: तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसके बीज की बुआई कर देना चाहिए।
0: अच्छा
1: बुआई करने के बाद जब बीज जो है अच्छे से जमा हो जाए बीज का, उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन पे जैसे वातावरण अनुकूल सिंचाई करते रहना चाहिए, और लगभग ये 40 से 45 दिन पे पूर्ण रूप से जब फूल आना शुरू हो जाए फसल में
0: हाँ
1: तो इसकी जो है कटाई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए,
0: अच्छा
1: फिर पानी भर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये अच्छे से मिट्टी पानी भर के छोड़ देना चाहिए, 10 से 15 दिन में अपने आप जो है ये उसमें जो है सड़के अच्छे से खाद के रूप में तैयार हो जाती है,
0: अच्छा
1: और उसके बाद जो है धान की रोपाई कर दें, जो भी फसल लेना हो उसकी बुआई करें, अच्छा उत्पादन होगा और जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ होंगे इससे।
0: सनई ढैंचा के अलावा और कौन ऐसी फसल है जोन की हमारे किसान पंच ये समय अपने खेते में बुवाई करें या उगावें तो वहू से उनका जोन बाई तरह के लाभ मिल सकता है?
1: जी, इस समय जो मूंग बोए होंगे फसल,
0: जी
1: मूंग जो बोए होंगे किसान,
0: हाँ
1: उसमें एक तो उन्हें मूंग ही मिल जाएगी, मूंग का
0: जी
1: दाना मिल जाएगा, उससे काफ़ी सारे फायदे हो जाएंगे, और जो पूर्ण रूप से पौधा जो है उसको जो है मिट्टी मिला देंगे वो पूर्ण रूप से हरी खाद का कार्य
0: अच्छा
1: करेगा।
0: यका मिलाव के लिए जैसे सनई ढेंचा के आए कि जोताई के पानी भर दिए वही तरह से यहू का करे हो
1: जी
0: थोड़ी
1: जी जी जी सेम प्रक्रिया है इसकी भी है। फली तोड़ने के बाद संपूर्ण पौधे को मिट्टी में मिट्टी प्लटहल से रोटावेटर से अच्छे से मिला देना चाहिए, पानी भर देना चाहिए, पानी डालने के बाद लगभग लगभग 10 से 15 दिन में अच्छे से जो है मिट्टी में मिल जाती है।
0: अच्छा उधर बारिश तो होए लागत है तो थोड़ा सा सिंचाई का अब मैं व्यक्तिगत रूप से करें मैं बचत हुई आज
1: जी
0: मेरे
1: जी
0: किसान
1: बिल्कुल
0: पंचन के।
1: जी
0: अब ये बताएं कि जोन भी ये के फसल हैं हरी
1: जी
0: खाद जोने से हमारे खेती में मिल सका था मेरे पंचन
1: जी
0: का
1: जी
0: वो के प्रमुख रूप से कौनी मेयर से लाभ बाय ताकि उनके जो ने जो रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता बाय ना
1: जी जी
0: यहू में कुछ कमी अवे काहे से आज के डेट में देखा जाए तो रासायनिक उर्वरक और तमाम दवाई ये खूब जैसे आप भी बताओ तो हो एक खूब किसान पंच प्रयोगों करता है कारण का है कि अच्छी उपज लिए का है उनका और
1: जी
0: रोग और कीड़वा से बचावे का भी है
1: जी
0: फसल
1: जी
0: का
1: जी
0: तो कैसे ऐसे लाभ लिए कुछ ये पे बता दी।
1: देखिए जैसे कि अब हरी खाद का उपयोग करने से कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, अन्य पोषक तत्व को बढ़ावा मिलता है मिट्टी में।
0: जी
1: उसके बाद जो है मिट्टी की संरचना जो है, जैसे होता है सॉयल एरेशन बोलते हैं, जैसे मृदा में जो है रंध्रावकाश खुल जाते हैं,
0: अच्छा
1: जो है मृदा में जो है वायु का संचार अच्छे से होता है,
0: अच्छा
1: और जो है उससे जो जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, और जो ऊसर भूमि है इसको लगातार बोने से काफ़ी सुधार हो जाता है।
0: अच्छा
1: उसके बाद जो है पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है।
0: वो कैसे भैया?
1: इसे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो जो जो आवश्यक जो अपने होते हैं सूक्ष्म कीड़े होते हैं छोटे छोटे अपने बेनिफिशियल जो कहते हैं फायदेमंद कीड़े,
0: हाँ
1: वो जो कीड़े होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से वो धीरे धीरे
0: नष्ट हो जाते
1: नष्ट
0: हैं।
1: होते जा रहे हैं।
0: बात सही है कि हमारे खेती में जो उन माटी में तमाम मित्र कीट भी आए और
1: जी
0: शत्रु कीट भी
1: जी
0: आए
1: जी
0: तो कईयों बार अपने सभी शत्रु कीट का मारे के चक्कर में
1: मित्र कीट
0: मित्र कीट का भी हम मार दी थी तो
1: जी
0: यह से फायदा तो हुआ है लेकिन कईयों बार नुकसान भी उठावे हुआ
1: जी
0: है।
1: जी
0: लेकिन अगर वह रसायन विधि ना अपनावा जाए एक तरह से जैविक
1: हाँ,
0: तरीका
1: प्राकृतिक
0: अपनावा
1: खेती
0: जाए
1: किया जाए
0: प्राकृतिक खेती की जाए
1: तो
0: तो हम
1: काफी
0: समझते
1: सारा
0: कि
1: लाभ
0: लाभकारी हुई।
1: जी
0: आगे बात करी भैया सूक्ष्म जोन जीव हैं इनके मात्रा बढ़ी अपने खेती में माटी में रहा है इसके लिए कुछ सुझाव हमारे किसान पंच का दिए।
1: जी जैसे ये है कि इसके हरी खाद का प्रयोग करने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है,
0: अच्छा
1: मृदा मृदा में जो उर्वरा शक्ति है उसमें जो है निरंतर करने से विकास होता है, और मिट्टी में सूक्ष्म कीट होते हैं, कुछ होते हैं जो वातावरण से जो है वायुमंडल से जो है उसको एकत्रीकरण
0: तमाम
1: करके,
0: पोषक तत्व का
1: हाँ
0: इकट्ठा
1: तमाम
0: करते
1: पोषक तत्व को जो है खींच के अपने जो है इसमें हरी खाद के जो नोडुल्स होते हैं उसमें जो है एकत्रित

0: करते हैं, वो जो डिकम्पोज करते हैं, तो वही जो है
1: केचुए का ले लिए। हाँ, ये अपने खेती के लिए बहुत लाभकारी है।
0: जी जी।
1: अब जब रसायन के अपने सब प्रयोग कर दी थी तो कई बार इनों के जीवन नष्ट हो जाते
0: जी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या। केचुआ जो है किसान का मित्र कहा जाता है।
1: बिल्कुल, पहले बहुत बरसात के समय में देखा जाए खेते में जाओ तो जगह जगह दिखाई पड़ते हैं, मूल आज की स्थिति इस बात की खोद डारो कहूं दिखाई नहीं पड़ते,
0: नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसका एक चीज और, जब पहले केचुए खेत में रहते थे जो बारिश होती थी वो छोटे छोटे पोर्स बनाए हुए रहते थे, तो उसमें जो
1: पानी
0: सब पानी जो है मिट्टी के अंदर चला जाता था
1: जी।
0: आज की स्थिति क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक जो है उर्वरक यूज करते करते वो जितने मित्र कीट हैं वो सीधे सीधे खत्म होते जा रहे हैं।
1: तो एक तरह से हमारे किसान पंच का जो ने केचुआ वाली खाद है
0: जी,
1: यहू का तैयार करे चाहिए अपने घर घर पे आसपास
0: जी जी,
1: और ये का अपने माटी में समय समय पर दे जरूरी है। कैसे, अगर ये केचुआ वाली खाद डालत है तो कुछ न कुछ भरपाई जो उन बाय ये माध्यम से भी हो जाए, अगर मान लो केचुआ अपने खेते में कम हो गए तो
0: जी। और जो है हरी खाद का उपयोग करने से मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, और जो मृदाजनित रोग हैं उन उसमें खरपतवार मृदाजनित रोग और खरपतवार में कमी आती है
1: जी।
0: मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया डॉक्टर प्रभात शुक्ला भैया। चलत चलावत हमारे किसान पंच का कम से कम समय में जौन भी आप सुझाव दें चाहें खास करके खेत की माटी के स्वास्थ्य के लिए तो देत चलें।
0: हाँ, हम किसानों को ये सुझाव देना चाहेंगे, खाली जमीन बिल्कुल ना छोड़ें
1: जी।
0: जैसे गेहूं कोई भी फसल कटने के बाद हरी खाद का उपयोग कर, हरी खाद की बुआई कोई भी बीज की बुआई कर दें, जिससे जो है उनको बीज का जो समय है खरपतवार का भी नियंत्रण रहेगा, और उसके बदले में जो हरी खाद का उपयोग करेंगे उससे काफ़ी आर्थिक रूप से रासायनिक फर्टिलाइजर रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना पड़ेगा
1: जी,
0: जिससे किसानों को बहुत अत्यधिक लाभ होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रभात शुक्ला भैया, आप सुकलहिया महामा बीकापुर अयोध्या से आयन, इतनी अच्छी बात है हमारे किसान पंच का बताएं कि हरी खाद उगावें और लाभ उठावें, अपनी माटी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके खेती भी अच्छी हुए, उपज बढ़िया मिले, और साथ साथ उपज के जो गुणवत्ता है वो उनका मिले, ये सबसे बड़ा हमारा फायदा रहे, क्योंकि अपने सब जोन भी उपज है अनाज है सब्जी है फल है खावा जाता है वो अपने सबकी सेहत का नुकसान न पहुंचावे, उसके अधिकतम लाभ बा वो अपने सबका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल पंचो, हम पंचन का लाभ मिले, लेकिन जब हम सब ही हरियर खाद उगाओ और लाभ उठाओ तब है। आज विशेषज्ञ रहे डॉक्टर प्रभात शुक्ला, जो उनकी कृषि विशेषज्ञ रहे शुक्लैया महामा बीकापुर अयोध्या से, इनसे फरिया फिर पूछिन प्रभाकर शुक्ला भैया। तो हम जानित थे कि ये खेती बदे हमें सबका हरियर खाद के बहुत जरूरत है, और तब है अपने सबके खेती पाती आगे बदे जो अपन खरीफ के फसल ले सुधरे, और सुधरे के बात की जाए तो अपनी पंचायती में ठीक गौने लेके यहाँ शशिकांत मिश्रा व साथी के शर्मा की अब की खेतिया लिया तू सुधार, ये गौने के माध्यम से कैसे का कहते हैं, चलो इनसे सुना जाए।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: पंचो देखो, अपने पंचन के मन मनसा नहीं गया, लेकिन पंचे लखत हुई अयोध्या मंडी से बाजारी के भाव जुड़ मिला है। पंचन का बताओ चली, चावल का मंडा 3,040 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा 2,585 रुपया, मक्का पीली 2,380 रुपया, उरद काली 8,980 रुपया, चना देसी 6,320 रुपया, जेमा मसूरी रही 6,900 रुपया, अरहर की दाल रही 10,700 रुपया, आलू सफेद रही 625 रुपया, प्याज ललकी रही 1,450 रुपया, टमाटर रहा 1,200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, जेमा लहसुन रहा 6,800 रुपया, तरोई 2,430 रुपया, खीरा का भाव रहा 1,500 रुपया प्रति क्विंटल, बैगन 2,300 रुपया, हरी मिर्च 3,050 रुपया, कोड़ा का भाव रहा 1,400 रुपया, अदरक रही 4,970 रुपया, जेमा भिंडी रही 2,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, लौकी 1,585 रुपया, करेला 1,300 रुपया, केला पक्का 2,500 रुपया, जेमा नींबू रहा 9,500 रुपया, पपीता 2,490 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, सेब रहा 10,950 रुपया, अनार 8,270 रुपया, गुड़बट्टी वाला 4,900 रुपया, चीनी 4,170 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। लगे आप मौसम की जानकारी, अधिकतम तापमान 33.0 जोन की सामान्य से 6.1 डिग्री कम रहा, न्यूनतम 22.5 डिग्री जोन सामान्य से 1.0 डिग्री कम रहा, आद्रता के अधिकतम रही 84%, न्यूनतम 46%, हवा की गति 4.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही, की दिशा रही दक्षिण हवा पूर्व हवा, पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहे की संभावना बटे और बरखा होने की संभावना नहीं है। लेकिन लगे हाथ पंचन का काल के कार्यक्रम बताओ चली, काल चर्चा हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सामयिक कार्य, भेंटवार्ता सुनवाई जाए गर्मी की जुताई के लाभ, ये भी सब बताइए डॉक्टर आनंद सिंह और गीत गुणी तो राह बकरी। लेकिन पंचों समय इजाजत ना दिया है और आगे बात बत कहीं करेगा, फिर कहीं मिला जाए, तब तक भी मिला कर दे अनुमति। पंचो जय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 से कार्यक्रम महफिल गजल और 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। रात 10:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हमारी कल की प्रसारण सभा में सुबह 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 7:30 से कार्यक्रम अमृत कलश, 8:15 से कार्यक्रम होगा सुर संगम, जबकि दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन सकेंगे 8:30 से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और महाराणा प्रताप जयंती दिवस पर चर्चा, नाटिका होगी ननकू की ससुराल, लेखक हैं चंद्रभूषण द्विवेदी, फिल्म संगीत और समाचार पत्रों से चर्चा तो होगी ही। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, जबकि 9:30 से कार्यक्रम होगा बातें आसपास की, 12:30 से

लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग और दोपहर 1 बजे से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। दोपहर 1:30 से कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि और दोपहर 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। जी हां श्रोताओं, कल है शनिवार और शनिवार को रहता है सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय होगा मूक जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य, और खास बात यह है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम युवाणी का समय होगा शाम 5 बजे। युवाणी में आप सुनेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर चर्चा, महाराणा प्रताप जयंती के बारे में जानेंगे, हमारी धरोहर में होगी शांति निकेतन की चर्चा, आर्थिक जगत में डेफ अकाउंट को समझेंगे और हीट वेव से बचाओ के भी समझेंगे उपाय। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत और शाम 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम सुहानी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुन सकेंगे 6:30 से, और 6:45 से कार्यक्रम होगा किसानवाड़ी। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में समसामयिक कार्य पर होगी चर्चा, गर्मी की जुताई के लाभ विषय पर आधारित आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आनंद सिंह की भेंटवार्ता आप सुनेंगे, भेंट करता है पूनम वर्मा। बाजार भाव और मौसम का हाल तो होगा ही। 8:15 से कार्यक्रम एक ही कलाकार से, जिसमें होगी गीतकार तलत महमूद पर चर्चा। 9:15 से महफिल गजल कार्यक्रम और 9:30 से सजीव फनिन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। श्रोताओं, तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपने ट्यून किया आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक

0: पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार

0: और परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना है, बहुत लाइट रेनफॉल छींटाकशी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। आप सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के।

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत पेश खिदमत है कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: विविध भारती पर

0: इस गजल के साथ ही गुलदस्ता कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: ये था विविध भारती का नजराना गुलदस्ता।

0: हे भगवान, हर एक नट पर एक नई आवाज।
1: उहां, उहां, उहां।
0: ओह ऑलमाइटी, बस एक अदद फरियाद है, किसी को कंपाउंडर कभी मत बनाना, और बनाए बिना ना चले तो मैटरनिटी होम का बिल्कुल मत बनाना।
1: उहां, उहां, उहां, उहां।
2: जोसेफ।
3: यस डॉक्टर।
2: तुम अभी गया नहीं रोजी के पास?
3: रोजी? अभी जाता हूँ, ये चला वो चला।
2: देखो, साथ लेकर आने का मैं अंदर है।
3: राइट डॉक्टर, साथ लेकर आने का मैं अंदर है। ओह रोजी, आई एम कमिंग रोजी, रोजी।
4: डॉक्टर साहब अंदर हैं क्या?
0: हाँ जी डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल हैं। बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
4: गुड मॉर्निंग कंपाउंडर साहब, आप बड़े जल्दी में हैं क्या?
0: बिल्कुल जल्दी में है। बैठिए वर्मा साहब, अभी बैठिए। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
4: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या?
5: शायद अंदर ही हैं।
4: अंदर हैं तो आ ही जाएंगे। माफ कीजिएगा, नाचीज को वर्मा कहते हैं
5: और मुझे

0: कुमार।
1: ओ कुमार, आपके कितने साहबजादे हैं कुमार साहब?
0: जी अभी तक तो
1: ओ, समझ गया समझ गया। तो आपका पहला तजुर्बा है?
0: जी आपका
1: अजी अपनी बात ही छोड़ दीजिए साहब, तजुर्बे चार गिनती पांच।
0: पांच?
1: क्यों डर गए क्या? आपका कसूर नहीं है हुजूर, आपका कसूर नहीं है। जमाना फैमिली प्लानिंग का जो है, हम तो साहब लक की प्लानिंग कर रहे हैं।
0: लक की प्लानिंग?
1: जी हाँ साहब, लक की प्लानिंग। हमारे जोशी के मुताबिक इधर सातवें साहबजादे आए और उधर हम,
0: आपका लक खुला।
1: बेशक बेशक, हम तो पामिस्ट्री में पूरा विश्वास रखते हैं।
0: मुबारक हो साहब, लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
1: कैसी बात कर रहे हैं साहब, इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
0: अजी साहब, हो सकता है छठे और सातवें साहबजादे एक ही साथ तशरीफ ले आए।
1: अब हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, ये भी हो सकता है।
2: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: पता नहीं साला बात करता है कि फिल्म के हीरो हीरोइन के मापी टेलीफोन पर डुएट गाना गाता है। चार मरतबा ट्राई किया पन साला एवरी टाइम एंगेज।
1: किसको फोन करना है डॉक्टर साहब?
0: अपनी मिसेस को करता है, किसी और को नहीं।
1: वो क्या यहाँ नहीं है?
0: क्या मगजमारी! अरे वो इधर होएगा तो हम उसको फोन करेंगे। बाबा वो पिंजरा पोल मैटरनिटी होम में है।
1: अच्छा, तो आपने एक और मैटरनिटी होम खोल दिया?
0: ओ माय गॉड, क्या मगजमारी! अरे बाबा, पिंजरा पोल मैटरनिटी में वो डॉक्टर नहीं, मरीज है। मरीज है?
1: तभी हम जैसे आप भी रिजल्ट के चक्कर में है डॉक्टर साहब।
0: रिजल्ट? काय का रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अरे कौन सा रिजल्ट का चक्कर? हेलो, यस, डॉक्टर पालना वाला स्पीकिंग। व्हाट? मिसेस पालना वाला? वो इधर नहीं है। आप कौन है? आप प्रेसिडेंट मंडल की महिला है तो? अच्छा अच्छा, हाँ, आप महिला प्रेसिडेंट नहीं, महिला प्रेसिडेंट का तरफ से बोलता है। हाँ, हाँ, हाँ। आपका महिला मंडल से हमको क्या मतलब बाबा? हाँ? क्या महिला मंडल का वाइफ तुम्हारा प्रेसिडेंट है? क्या साला मगजमारी है? हाँ? ऐसा महिला मंडल का प्रेसिडेंट तुम्हारा वाइफ है? देन व्हाट? आज शाम महिला मंडल के जलसा में तुम लोग हमारा मिसेज पालना वाला का टॉक रखना मांगता है, पर काहे को बाबा? फैमिली प्लानिंग पर? अरे तुमको और कोई नहीं मिला? क्या बोला? आने की हालत में नहीं, पर बाबा तुम्हारा मतलब क्या है? सबका सब किसी दूसरे मैटरनिटी होम की पेशेंट है। पर हम बोलता है अपनी लिस्ट में एक नाम और बढ़ा दो, मिसेज पालना वाला। फालतू मगज मारी ओइच महिला मंडल, अरे महिला मंडल।
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
0: सबर करो नहीं जरा।

0: डॉक्टर साहब का दिमाग बड़ा गर्म लगता है।
1: वो आई और दिमाग ठंडा, बिल्कुल ठंडा, बर्फ से भी ठंडा।
0: वो कौन?
1: अब बोलो, तुमको इतना भी नहीं मालूम?
0: नहीं।
1: वो परिस्तान की हूर है,
0: है?
1: मेरे मन की रानी है,
0: है?
1: दिल को घायल करने का मसाला है। रोजी उसका नाम है, गाल पे तिल पहचान है।
0: अच्छा।
1: रोजी
0: उसका नाम।
1: अरे भाग जाग गई इस मैटरनिटी होम के।
0: कैसे?
1: अरे मेरे ब्रादर,
0: हाँ।
1: डॉक्टर मैम साहब पिंजरा पोल में, मैडम मिरांडा नर्स बीमार।
0: अच्छा।
1: आया धनवंती का आदि भाग गया, वो गई काम से। अब बताओ, एक अदद डॉक्टर, एक अदद कंपाउंडर और एक अदद बुढ़ी आया से कहीं मैटरनिटी होम चल सकता है?
0: नहीं,
1: बिल्कुल नहीं,
0: नहीं।
1: लेकिन नहीं,
0: ऑक्सीजन
1: का सिलेंडर अब आ रहा है।
0: यार किसी तरह डॉक्टर साहब का गुस्सा ठंडा करो तुम बस।
1: अभी तुम जाओ।
0: अच्छा।
1: एक घंटे बाद आना, मौसम बदल जाएगा।
0: अच्छा अच्छा, तो मैं जाता हूँ, एक घंटे के बाद आता हूँ। एक घंटे के बाद
2: जोसेफ?
1: यस डॉक्टर।
2: ओ आई नहीं?
1: जी नहीं, फिर जाऊं?
2: क्या मगज मारी किडर पे नहीं जाने का? उफ, आज तो माइंड ही चाउट हो गया।
1: वो आएगी, इन हो जाएगा।
2: ओ शट अप।

रिजल्ट का चक्कर। हवा महल में अभी आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: सुनो एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
0: कार्यक्रम गीत गुंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को विवेकानंद का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, हमें पता है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, है ना, क्योंकि आप अपना और अपनों का ख्याल रखते हैं। लेकिन जानते हैं विचार बीज की तरह होते हैं, जैसे बीज बोने के बाद सिंचाई और देखभाल से वे फल देते हैं।

वैसे ही विचारों को व्यवहार में उतारना भी आवश्यक होता है। केवल विचार करना काफी नहीं होता, उन्हें कर्म में बदलना भी जरूरी होता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे और खुश रहे हमेशा।

श्रोताओं, कई बार लोग अच्छे विचार तो रखते हैं लेकिन आलस से, निराशा और असमर्थता के कारण उन्हें अमल में नहीं ला पाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन दिशाहीन हो जाता है। संकल्प विहीनता और अनुशासनहीनता से कोई भी सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संकल्प को दृढ़ करे और निरंतर प्रयास करता रहे। जानते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है।

श्रोताओं, सफलता एक सतत प्रक्रिया है। इसमें मनोबल, योजनाबद्ध कार्य और समय का सही उपयोग जरूरी होता है। संकल्प तभी सार्थक होता है जब वह लगातार अभ्यास से जुड़ा हो। सफलता का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं बल्कि नियमित और सकारात्मक प्रयत्नों में छिपा होता है। इसके लिए धैर्य, तप, साधना और

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आपने ट्यून किया है 101.9 और एफएम बैंड के साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। श्रोताओं, मन की आदतें ही जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार संकल्प ले लेकिन उसे निभा ना पाए तो ये उसकी खुद की अनुशासनहीनता कही जाएगी। बिना अपने स्वभाव को बदले कोई महान कार्य संभव नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कोई कार्य करें तो संकल्प मजबूती के साथ लें। विद्या, कला, साधना, सेवा, आत्मविश्वास, कुछ भी हो, सब में सफलता के लिए खुद का अनुशासन बहुत

क्षणों बहाने बनाना बहुत आसान होता है, कभी समय की कमी, कभी संसाधनों की कमी, बस ऐसे ही। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ा कार्य किया है ना, उन्होंने इन्हीं सीमाओं के भीतर रहकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जब भी कोई कार्य कठिन लगे तो यह सोचना चाहिए कि यह मेरे आत्मविकास का अच्छा अवसर है, और पूरी तल्लीनता के साथ जुट जाना चाहिए।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों की गीत सुनी वो थी वक्त, जॉनी मेरा नाम, सौदागर, राजकुमार और नीला आकाश। मिली जुली आवाजें थी किशोर कुमार, उषा खन्ना, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। फिलहाल गीत गुंजन के इसी शानदार सफर के साथ दीजिए विवेकानंद को इजाजत। सुंदरी आकाशवाणी अयोध्या।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी

0: की सरकार बनी है हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।

0: या
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष

0: पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें

0: कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 9:15 में हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिले गजल।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कार्यक्रम में पहली पेशकश लीजिए, सुनिए रूप कुमार राठौर की आवाज में।

रूप कुमार राठौर की आवाज में भी हम सुन रहे थे ये गजल। कार्यक्रम महफिले गजल आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है और अब लीजिए सुनिए अशोक खोसला की आवाज में ये गजल।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो अयोध्या।
3: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
4: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
5: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
4: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
5: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।
6: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
2: जी हां श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो अयोध्या। जी हाँ, सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मिलाइए नंबर वही पुराना 73-76-80-40-90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें, क्योंकि जी वही लाइव फोन इन प्रोग्राम है हेलो अयोध्या। नंबर मिलाना है 73-76-80-40-90। हम कर रहे हैं आपकी फोन कॉल्स का इंतजार। एक कॉल आ गई। हेलो हेलो हेलो
7: हेलो
2: जी, आपकी कॉल लग गई। कहाँ से फोन लगाए?
7: हेलो
2: जी, आपकी कॉल लग गई। कहाँ से फोन लगाए?
7: हाँ जी सर
2: जी,
7: नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार।
7: नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
7: हम केशवपुर बस्ती से बोल रहे हैं सर।
2: केशवपुर बस्ती से?
7: हाँ जी।
2: अपना अपना नाम भी बताइए।
7: शिव प्रसाद यादव।
2: अच्छा शिव प्रसाद जी, क्या करते हैं आप?
7: सिलाई करते हैं जी।
2: सिलाई?
7: हाँ जी हाँ जी।
2: क्या बात है। तो सबसे ज्यादा कौन सा कपड़ा सिलते हैं? कौन सिलना पड़ता है कपड़ा जो ऐसा?
7: एक महीना लगता है सर।
2: अच्छा समय लगता है, लेकिन किस कपड़े में सबसे ज्यादा?

0: समय लगता है?
1: हाँ जी,
0: कौन से कपड़े में सबसे ज्यादा समय लगता है?
1: कपड़े में ब्लाउज में ज्यादा समय लगता है और पैंट बुशर्ट में कम समय लगता है जी।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा आप कौन सा कपड़ा बनाते हैं, पैंट शर्ट में कि कोई और कपड़ा?
1: पैंट शर्ट कुर्ता पजामा।
0: अरे वाह, मतलब आप सारे कपड़े बना लेते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी।
0: क्या बात है। आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: आदमी एक खिलौना है।
0: आदमी खिलौना है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए। हाँ,
1: हाँ जी
0: हम ये कह रहे हैं कि पैंट शर्ट बच्चों का बनाने में भी उतना ही समय लगता है जितना बड़ों का बनाने में समय लगता है।
1: नहीं, समय तो उतने लगता है क्योंकि छोटे में ज्यादा घुमाना पड़ता है, बड़े में कम घुमाना पड़ता है।
0: अच्छा, मतलब छोटे में वक्त ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। अच्छा, बढ़िया। आपसे बात करके अच्छा लगा, आप इस कार्यक्रम के पहले कॉलर, तो आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं।
1: ओके सर, नमस्कार।
0: नमस्कार श्रोताओं, ये थे शिव प्रसाद जी। आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा, करना कुछ नहीं है, मिलाइए फोन, फिर करिए हमसे बातें। लाइव फोन इन प्रोग्राम है, हेलो अयोध्या। जी हाँ, नंबर वही है 73 76 80 40 90 और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मिलाइए फोन, आज मैं हूं आपके साथ विवेकानंद, और कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं अरविंद कुमार।

0: जी हाँ श्रोताओं, लाइव फोन इन प्रोग्राम है हेलो अयोध्या। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैं श्यामा बोल रही हूँ, श्यामा प्रवीण, मेरा सुल्तानपुर से।
0: अच्छा, आपकी कॉल तो लगातार लगती ही रहती है ना?
1: जी
0: तो आज
1: हाँ अभी शुरू हो गया प्रोग्राम, हो रहा था, मेरी कॉल लगी थी, बुरे बुरे बेल गई, आपने उठाई नहीं, नहीं तो पहली कॉलर बन जाती।
0: ओ, अब क्या बताएं, अब यही गड़बड़ हो गया, लाइव
1: है। पूरी रिंग जा रही थी, मैं सोची उठाएंगे नहीं क्या।
0: हाँ लेकिन, हाँ लेकिन उठ गया, फोन रिसीव हो गया और आपसे बात भी हो रही है।
1: जी सर।
0: तो मैं भूल गया आप क्या करते हो।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।

0: हैं, पढ़ाते हैं?
1: नहीं, हाउसवाइफ।
0: अच्छा, पढ़ा मतलब घर पे रहते हैं, गृहिणी हैं।
1: घर पे रहते हैं।
0: ठीक है, अब ये ना कहिएगा कि कुछ नहीं करते हैं।
1: नहीं, करते हैं, बहुत करते हैं। फोन भी लगाते हैं, इतने मेहनत से फोन लगा रहे हैं,
0: और
1: नाम आपके सुनते हैं सारे।
0: बिल्कुल सही बात।
1: मैसेज भी करते हैं आपके पास, लिखते हैं मैसेज।
0: सही, तो
1: बहुत मेहनत वाला काम करते हैं।
0: और क्या, ये सारी काम मेहनत के ही हैं इसमें। अच्छा, मेहनत क्या कोई जरूरी है कि केवल शारीरिक हो, मानसिक भी तो होती है। और क्या, मन अगर लगा रहे कुछ किसी काम में तो भी तो वही उतना ही बात होती है ना।
1: और क्या।
0: हाँ, अच्छा, कौन सी फिल्म
1: का?
0: हाँ हाँ, आई एम राइट। कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा?
1: ये सुनना है अनाड़ी मूवी का, क्या मौसम आया।
0: अनाड़ी मूवी का देखते हैं कि हमारे पास है या नहीं है। वैसे मौसम कैसा है इस समय?
1: मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाए हैं, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी।
0: हाँ, ये तो बात सही है। मौसम सुबह गर्मी हो जा रही है और शाम को ठंडक हो जा रही है। सही है,
1: रात में ठंड लगती है।
0: हाँ हाँ, रात में ठंड लगती है,
1: धूप निकलती है तो गर्मी लगती है। नहीं तो फिर अगर मौसम खराब हो जाता, कभी कभी सुबह में होगी बारिश होने लगती है या बादल आ जाते हैं तो ठंड हो जाता है पूरा।
0: बिल्कुल सही बात है। अभी कल एक श्रोता बता रहे थे कि वो रात में रजाई ओढ़ करके सोते हैं, इतनी ठंडक।
1: जी, हमने भी सुना था।
0: हाँ,
1: अयोध्या।
0: हाँ, तो इस तरह मतलब मौसम सुबह दूसरा।
1: नहीं, हाँ, रात मतलब ऐसे पंखा चालू करो, जैसे कूलर चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे पंखा ही चालू करो तो फिर ठंडी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: जैसे कम्बल या कोई चादर उतर ओढ़ो, ओढ़ना पड़ता है।
0: सही, चलिए, बढ़िया लगा आपसे बात।
1: बहुत ख्याल भी रखना है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बिना मौसम की ठंडी है ये, मई की ठंडी।
0: हाँ, और ये मई की ठंडी है।
1: मई की ठंडी है, ठंडी सर, मई की ठंडी।
0: इससे बच कर रहना है। सुबह पता चला गर्मी लगी और रात में ठंडक लगी, बस गर्म। और
1: मौसम खराब हो जाए, कब बारिश हो जाए, ऐसे बारिश जाती है, बादल आ जाते हैं, ऐसे एकदम अंधेरा हो जाता है सुबह, ऐसे लगता है सुबह में रात हो जाती है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मौसम तो ऐसे ही इस समय बदल रहा है, सब प्रकृति की देन है। सब
1: ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए ठंडी ठंडी हवा भी चलती है।
0: हाँ, नहीं सही बात है। चलिए, फिलहाल आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं।
1: मैं सही बात बोल ही रही।
0: हाँ,
1: हेलो, बोल ही रही हूँ क्या? झूठ बोल रही हूँ
0: क्या? चीज,
1: हेलो।
0: हाँ,
1: आवाज नहीं जा रही?
0: ना ना, मैं सुन नहीं पा
1: रही हूँ। मैं तो सही बोल ही रही हूँ क्या? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ।
0: अरे, आप झूठ बोल ही नहीं सकते, और इस समय सब लोग सुन रहे हैं, इस समय तो वैसे भी झूठ नहीं बोलना है। नहीं, खुशी तो हमको भी हो रही है, क्योंकि जब फोन लगता है आप लोग बात करते हो, और जो है
1: बहुत ज्यादा सुनती है, दीवानी हूँ एकदम।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, और शुक्रिया आपका। तो अब गीत सुन
1: लगा के बहुत ध्यान से प्रोग्राम सुनती रहती हूँ।
0: ठीक है,
1: काम भी करती रहती हूँ, सुनती भी रहती हूँ।
0: हाँ, नहीं अच्छा,
1: बात हो जाती है तो और अच्छी। अरे
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी पसंद का गीत प्ले कर दिया मैंने।
1: थैंक यू सर।

0: जी हाँ श्रोताओं, लाइव फोन इन प्रोग्राम है हेलो अयोध्या। बस मिलाना है आपको नंबर 7376-8040-90 और फिर होगी हमसे बातें लाइव फोन इन प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: हाँ सर, जिला बस्ती से, ग्राम पगार से।
0: आप
1: सुनील कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ वही तो हम पूछ रहे थे कि नाम नहीं बता रहे हैं आप। तो सुनील जी क्या करते हैं
1: सर? इस समय घर पे हैं।
0: तो क्या मतलब, कुछ पहले करते थे क्या कि इस समय नहीं कर रहे हैं?
1: हाँ सर, हॉन्टेड हाउस में काम करते थे पहले दिल्ली में।
0: अच्छा, आप नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ आ गए? तो
1: हाँ घर पे हैं, इस समय थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए।
0: अच्छा।
1: उसके बाद प्रोजेक्ट में, हाँ फाइबर लाइन में भी काम किए थे कुछ दिन।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: तो क्यों फिर फाइबर लाइन और फिर दिल्ली में जो काम किए सब क्यों छोड़ दिए? अगर छोड़ दिए तो यहाँ क्यों नहीं कुछ शुरू कर रहे हैं आप?
1: नहीं सर, इस समय तबीयत थोड़ा खराब है इसी वजह से।
0: अच्छा, तबीयत की वजह से, तो कोई बात नहीं, तब तो फिर बढ़िया से इलाज कराइए, स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद तब फिर
1: इलाज। हाँ सर, ऑपरेशन हुआ था ना। ठीक है सर।
0: अच्छा, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे सुनील जी?
1: सर सिर्फ तुम का कोई गाना सुना दीजिए।
0: सिर्फ तुम का?
1: हाँ।
0: तो आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ सर, अभी 3 महीना से सुन रहे हैं। हम तो बहुत पहले सुनते थे।
0: अच्छा, फिर
1: 2007 में। हाँ, उसके बाद फिर यही चालू किया है।
0: हाँ, फिर आप दिल्ली चले गए होंगे तो फिर बीच में नहीं सुनते?
1: हाँ,
0: ना?
1: तो वहाँ प्रसारित नहीं था ना।
0: लेकिन
1: जब आए तो सुनना चालू किए।
0: हाँ, लेकिन ऐप पर तो बहुत दिनों से है।
1: नहीं सर, पहले बार जैसे अभी आए थे तो लगभग हमसे 2020 में लगभग चालू हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ तो मैं, हाँ जब हम गए वहाँ 2012 में तो नहीं सुन पाए। उसके पहले तो सुनते तो पार्टे रेडियो भी सुनते हैं, अभी भी रेडियो भी सुनते हैं।
0: अच्छा, सिर्फ तुम का कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: कोई भी सुना दीजिए सर।
0: बढ़िया है, अच्छी आदत है। तो कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: सर अभी तो ये हल्लो फरमाइश, सुबह में जो कार्यक्रम चलते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। कार्यक्रम सभी अच्छे हैं सर।
0: सभी अच्छे हैं, चलिए बढ़िया। हाँ। आपसे बात करके अच्छा लगा। और
1: हाँ,
0: हम सर एक गीत प्ले कर रहे हैं आपके लिए।
1: हम सबका सर वो मनमान से चलता था तो पत्थर जाता था उसे।
0: हाँ अरे वो तो आप सभी श्रोताओं का बहुत पसंदीदा कार्यक्रम था।
1: हाँ सर,
0: वो मन भावन, सबका मन भावन था।
1: हाँ सर, बहुत अच्छा चलता था।
0: चलिए ठीक है, बढ़िया लगा। तो सिर्फ तुम फिल्म
1: बहुत
0: का
1: अच्छा सर, बहुत खुशी हुई। आज हमारा 4 मई को भी फोन लगा था, आज भी लग गया।
0: क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ श्रोता जिनके फोन लगते हैं उनके फोन लगातार लगते हैं।
1: सर कोशिश करने से लगता है, कभी हार नहीं मानना चाहिए। फोन तो अब इतने लोग लगाते हैं तो फोन तो बिजी जाएगा, लेकिन जब लगाते रहो लगेगा फोन।
0: बिल्कुल, हमें लगता है इसी वजह से आप कुछ
1: हाँ,
0: लोग हैं।
1: अगर 4 बार लगा के छोड़ दिए तो सोचे नहीं लगेगा, तो इसका मतलब आप लगाते रहिए, लगेगा फोन।
0: बिल्कुल, 15-16 कॉलर ऐसे हैं जिनकी कॉल आ ही जाती है और हमें लगता है यही वजह है।
1: पूरा घंटी एक बार जाने मत कट गया, लेकिन मैं लगाऊंगा, लगेगा।
0: चलिए बढ़िया है, आपसे बात करके अच्छा लगा और आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं।
1: ठीक है सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते। श्रोताओं मिलाते रहिए फोन, लाइव फोन इन प्रोग्राम है हेलो अयोध्या। नंबर बाद है आपको वही वाला है पुराना, वही 7376-8040-90। मिलाते रहिए फोन। जी हाँ, मुलाकात जरूरी है इस पर।

0: अक्षता मिलाते रहिए फोन, मिलाते रहिए फोन, लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो अयोध्या, हेलो हेलो जी,
1: हेलो
0: हाँ हेलो हाँ, आपका फोन लग गया। हेलो
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है?
1: मैं अभिनव कटारिया, अकबरपुर अमृतसर से।
0: नाम फिर से बताइए, कसारिया कौन? पूरा नाम नहीं सुन पाया मैं।
1: अभिनव कटारिया।
0: अच्छा अभिनव, क्या करते हो आप?
1: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में?
1: यूकेजी।
0: यूकेजी, अरे वाह क्या बात है। तो आपको ABCD याद है?
1: जी।
0: सुना दीजिए फिर तो हमें अच्छा लग जाएगा। अरे वाह, आपको 100/100, 100 में 100 नंबर। और कोई पोयम? हाँ बाबू बताओ। किसका? फिर से, मैं सुन नहीं पाया बाबू।
1: धड़कन
0: धड़कन का। अच्छा तो आपको पोयम याद है कोई? पोयम याद है कि नहीं? नहीं याद है। ओफो, और कविता
2: कुछ सुना दो।
0: कविता नहीं याद है?
1: नहीं याद है।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा प्रेयर याद है जो आपके स्कूल में होती है सुबह?
1: याद है।
0: वो कौन सी है बता दीजिए तो? बता दीजिए कौन सी होती है प्रेयर? हाँ आगे, ओम भूर भुवः स्वः। चलिए बढ़िया लगा आपसे बात करके।

नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब पोयम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, बढ़िया पोयम याद कर लीजिएगा, 2-3 दिन में फिर जब हम लोग की बात होगी तो पोयम आप सुना दीजिएगा सबको, ठीक है? ओके, आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए। बाय बाबू, बाय। श्रोता हूँ, आप भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। जी, करना कुछ नहीं है, मिलाइए फोन। जब UKG का छात्र मिला सकता है, मुझे तो ठीक बात है कि उसके पीछे कोई था, लेकिन फिर भी मिला तो सकता है ना, तो आप भी मिलाइए फोन। 73-76-80-40-90।

0: जी हाँ श्रोताओं, धड़कन धड़कन इधर भी धड़कन फोन कॉल्स का हम कर रहे हैं इंतजार। एक कॉल आ गई है, करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, स्वागत है आपका।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: और सर आप ठीक हैं?
0: हम बढ़िया हैं। कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: अब आई?
1: हाँ भाई।
0: चलिए बढ़िया, हम पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है।
1: हम सर यहाँ ताड़ी से बोले, बीकापुर।

0: मेरा नाम सुमन है।
1: अच्छा, क्या करते हो आप सुमन?
0: कुछ नहीं, हाउस वाइफ है।
1: यही तो समस्या है, जिसको देखो वो कहता है कुछ नहीं और होता है
0: तो हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, दो सास ससुर है, फैमिली है।
1: तब और उन सब के लिए खाना बनाते हैं हम लोग, साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं।
0: हाँ सर,
1: हम कह रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ करते

0: हम कह रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
1: अब क्या करें, फैमिली है इसी में पड़े हैं।
0: नहीं ठीक है, अच्छी बात है, फैमिली है ये तो अच्छी बात है, जिनके यहाँ फैमिली नहीं उनसे पूछो। और इस समय भी आप कुछ काम ही कर रहे हो?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं, बस घर पे ही रहते हैं।
0: नहीं इस समय क्या कर रहे हो? क्योंकि बहुत शोर हो रहा है, पीछे बर्तनों की आवाजें आ रही है।
1: आवाज नहीं आ रही ना सर आपके साथ।
0: और बर्तन की हमें आवाज सुनाई दे रही है आपकी तरफ से?
1: हाँ बर्तन की आवाज।
0: हाँ अब देखो आवाज बंद हो गई, इसका मतलब बर्तन
1: के... नहीं नहीं सर बंद नहीं हुई है।
0: बर्तन के पास कोई था तो शांति हो गई क्या थोड़ी सी?
1: बर्तन के पास ही थे।
0: वही तो हम कहे कि आवाज आ रही है। कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा आज?
1: सर हम साथ साथ हैं।
0: हम साथ साथ हैं, अच्छा तो अच्छा। रेडियो पर भी आप वहीं बगल में, हमें लगता है कि एक और रेडियो बगल में रखा है उस पर भी आवाज आ रही है।
1: हाँ रेडियो है बगल में, दूसरे कमरे में है।
0: हाँ तो क्योंकि उसकी भी आवाज हमें सुनाई दे रही है, इको हो रही है।
1: अच्छा अच्छा ठीक है सर।
0: लेकिन कोई बात नहीं, तो आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं और भी लोग आपके साथ सुनते हैं?
1: नहीं हमारे घर में सारे सुनते हैं, हमारी देवरानी है, बच्चे हैं, ससुर हैं, सास हैं, नंद हैं, सारे सुनते हैं।
0: अच्छा और सब लोग अपनी अपनी पसंद का सुनते हैं कि नहीं?
1: नहीं सारे बैठे थे, मम्मी बोली, सासू माँ मेरी बोली लगाओ देखो आज तो लग गया, बहुत दिन ट्राई किए सर लेकिन लगा नहीं, आज लग गया।
0: तो अच्छा कुछ लोग हैं जिनके फोन लगातार लगते रहते हैं, तो आप कितने दिन बाद?
1: नहीं मेरा नहीं लगता सर, मैं एक महीने से ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं लग रहा, आज लग गया पता नहीं कहाँ से।
0: कोशिश करने से लग गया, आपने कोशिश किया इसलिए, और सासू माँ का आदेश का पालन हो गया तो इसलिए फोन लग गया।
1: सासू माँ का आदेश का पालन तो हो ही गया।
0: चलिए तो कौन सा गीत इसका बजा दें इस फिल्म का? हम साथ साथ हैं।
1: कोई सा भी सर बजा दीजिए, हम साथ साथ हैं।
0: ठीक है तो हम साथ साथ हैं का हम साथ साथ हैं ही बजा देते हैं।
1: हाँ ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते श्रोताओं, जी हाँ ठीक 10 बज गए हैं, मिलाते नहीं फोन 73-76-80-40।

रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज़, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
5: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
4: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
5: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
6: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
7: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: जी हाँ श्रोताओं, फिर से हम हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। एक कॉलर लाइन पर हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
9: हेलो
8: जी, आपकी कॉल लग गई।
9: हेलो,
8: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाए हैं?
9: सर जगतपाल पांडे बोल रहे हैं सर, जिला बस्ती केशवपुर गाँव।
8: क्या नाम बताए अपना?
9: सर जगतपाल पांडे, केशवपुर गाँव, जिला बस्ती।
8: अच्छा, क्या करते हैं?
9: सर छोटा मोटा नौकरी करते हैं सर, जो नन्नी नगर महाविद्यालय में चौकीदारी।
8: अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, कम से कम मेहनत तो करते हैं तो।
9: जी सर।
8: और समय निकाल लेते हैं प्रोग्राम सुनने का?
9: जी जी, डेली सुनते सर, आज करीब कोई महीना से फोन लगा रहे सर, तो लग रहे हाल लगा सर, बहुत भागदार हम भी हैं आपके।
8: बिल्कुल, और हम भी, हाँ हाँ, हम भी भाग्यशाली हैं कि आपका फोन लग गया ना। और सही बात,
9: सर लगा था सर पूरा घंटे गया तो फोन उठा नहीं था, तो अब जो लगाते रहेंगे लगाते किसी न किसी दिन तो हो गए।
8: बिल्कुल
9: हो गई,
8: बिल्कुल सही बात है। और आज देखिए आपकी कॉल लग गई, आपके पहले जो कॉल आई थी वो कट गई थी और आपकी कॉल तुरंत आ गई।
9: जी जी, जी,
8: तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
9: जी हम धानी पिक्चर सुन रहे हैं सर, जय मां संतोषी पिक्चर है।
8: धानी,
9: जय मां संतोषी पिक्चर है आपके पास?
8: अब तो देखना पड़ेगा,
9: अगर हो तो सर सुना दी मलधार में अटकी गया पारक्रमा।
8: हाँ कुछ हमें याद तो आ रहा है, शायद है ये, देखते हैं। तो
9: हम सर पूजा पाठ सर करते हैं मंदिर मंदिर पर, तो हम जाते सर धाम की दर्शन में।
8: मैं देख रहा हूँ आपका गाना, ढूंढने की कोशिश करता हूँ।
9: हाँ, चाहे दुर्गा माता का वो जो कहा लेके पूजा थाली मन की ज्योति जला ली।
8: संतोषी माता का ना?
9: जी जी जी,
8: देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका गीत मिल जाए और आपकी पसंद।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। मिलाते रहिए फोन, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या में।

0: जो है आज
1: जय माँ तुलसी हो या जय माँ दुर्गा को,
0: मतलब कोई भी, लेकिन आपको भक्ति ही सुनना है और माता जी का ही सुनना है।
1: जी जी जी जी।
0: अच्छा ये बात है, तो कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए लगातार।
1: जी सर, वहाँ ना मिलेगा सर कोई बात, वैसे कोई ध्यान सुना दिए जी।
0: हाँ लेकिन हम कोशिश तो करेंगे ही हम आपके लिए, क्योंकि आप बहुत दिन से, मतलब काफी समय से आप कोशिश करते रहे हैं, फिर आपकी कॉल लग गई है।
1: जी जी जी
0: तो ठीक है, और दुर्गा है मेरी माँ ये वाला गीत हम आपके लिए प्ले करते हैं।
1: ठीक है सर, ठीक वही बंद।
0: तो और एक चीज बताइए
1: सर, आशीर्वाद सब आपका है, धन्यवाद। ये नेताजी विद्यालय छोटा मोटा जो उन्होंने महाविद्यालय,
0: जी जी जी बिल्कुल अच्छा है, और आप सेवा करते हैं ये अच्छी बात है, और डटे रहिए इसी तरह, और
1: इसी में सर रात ड्यूटी कर रहे हैं समय,
0: और रात की ड्यूटी करते हैं और प्रोग्राम भी सुन लेते हैं।
1: जी
0: ठीक है, तो आपसे बात करके अच्छा लगा, और हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं।
1: ठीक है
0: श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अध्याय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्याय केंद्र से एक कॉलर लाइन पर हैं इनसे बात करते हैं हेलो जी
1: हेलो
0: आपकी कॉल लग गई कहाँ से फोन लगाए
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते
1: चन्नू भाई वाले बोल रहे बेगमगंज लड़िया से
0: अरे वाह तो इतना बगल से कैसे फोन लग गया
1: लग जाता है
0: तो बगल में होने
1: चार हफ्ते बाद लगा है सर जी
0: अरे वाह ये तो अच्छी बात है लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बगल में होने की वजह से तो कॉल नहीं लगी ना
1: जी बगल में ट्राई करते रहो सर जी लग जाता है
0: सही बात है कोशिश करने से तो सफलता मिल ही जाती है तो कौन सी

0: फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: सलामी पिक्चर का सुनेंगे, चेहरा क्या देखते हैं दिल में उतर को देख।
0: ऐसा ये गाना गा सकते हैं क्या?
1: है?
0: ये गाना गा सकते हैं?
1: गाना गा नहीं सकते सर जी।
0: अच्छा, तो आप तो अपना नाम बताए कोई बैग वाले, तो इसका मतलब आप बैग बनाते होंगे?
1: जी सर जी।
0: तो कौन सा बैग सबसे मजबूत होता है?
1: तिरपाल होता है।
0: तिरपाल वाला। और अगर जो रैक्सीन वगैरह के लोग बनाते हैं वो अच्छा नहीं होता है?
1: फट जाता है।
0: अच्छा, वो चलता नहीं। अच्छा, तो लेकिन क्वालिटी में भी अंतर होता है, तो फिर रेट में भी अंतर होता होगा?
1: जी जी।
0: तो वो महंगा होता होगा ना तिरपाल वाला? और आपको बनाने में भी समय लगता होगा उसको?
1: जी, समय लगता
0: है। वही तो। अच्छा, लगभग कितना समय लगता है रैक्सीन या तिरपाल वाला बनाएंगे तो? क्या एक ही समय लगेगा?
1: समय उतना ही लगता है सर, सिर्फ मजबूती फर्क होता है।
0: अच्छा अच्छा, तो और इसमें मेहनत भी लगती है कि मतलब मेहनत उतनी नहीं लगती?
1: मेहनत उतनी लगती सर जी।
0: अच्छा, मेहनत
1: पूरी
0: कपड़े का फर्क हो जाता है, क्या है, बढ़िया। तो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या, आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं।
1: गुड नाइट।
0: गुड नाइट, गुड नाइट। जी हाँ श्रोताओं, बस आप भी यही करिए, मिलाइए फोन और नंबर वही है 7376-8040-90। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। मिलाते रहिए फोन, मिलाते रहिए। जानते हैं आप, मैं बताया नहीं अभी, वो 10:15 हो रहे हैं, यानी कि 45 मिनट का सफर पूरा हो गया।

0: साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, कहाँ से फोन लगाए हैं?
0: नई जद्दा गल्हर यादव।
1: नई
0: तिहुरा? हाँ तिहुरा माझा।
1: अच्छा, तिहुरा माझा दर्शन नगर की तरफ से।
0: हाँ।
1: क्या बात।
0: फिल्म सुनना है, झुमका गिरा बरेली बाजार वाला गाना सुनना है।
1: काहे ऐसा?
0: अरे ढेर दिन होगा साहब, उसको नहीं सुनेंगे। सुन मिला। हाँ तो
1: इसी
0: पसंद का।
1: इसीलिए आपका मन कर रहा है उसको सुनने का।
0: हाँ साहब। हाँ।
1: तो ये पिक्चर भी देखे हैं?
0: नहीं पिक्चर नहीं सर देखे, लेकिन आपका गाना आपके रेडियो से तो हम सुने थे। फोन लगा रहे थे आपके, लगे लगते ही नहीं रहा फोन।
1: लेकिन आज तो लग गया ना।
0: हाँ आपका साहब सबके धन्यवाद। मंगा साहब गाना लग गया।
1: तो जैसे क्या कर रहे थे, कैसे कुछ कर रहे थे कि कैसे फोन लग गया?
0: अरे अब खा पी के लेटा रहना है, फोन लगाते लगाते साहब आपके कॉल लग गई है।
1: तो अब प्रोग्राम सुनते हैं कि खाली बस हेलो अयोध्या सुनते हैं?
0: नहीं, प्रोग्राम आपका सब सुना जाता है बराबर की। तीन चार ठोर मोबाइल के सहारे फोड़ आ रही।
1: अच्छा, प्रोग्राम मतलब ये प्रोग्राम सुनने के चक्कर में?
0: हाँ।
1: अरे तो फिर कैसे बनवाए? फिर कैसे मोबाइल बनवाए फिर?
0: हाँ तो फिर लाए साहब काम की।
1: हाँ ये तो है, बिल्कुल सही बात है, वो तो लाना ही पड़ेगा।
0: हाँ।
1: तो कितने का नुकसान किया?
0: अरे 27-28 सौ के बच्चे नुकसान कर रहे साहब।
1: यही है, देखिए अब प्रोग्राम सुनने के चक्कर में, लेकिन प्रोग्राम सुनते रहना चाहिए। प्रोग्राम सुनने से थोड़ा ठीक है, गिर जा मतलब हो जाता है, कोई बात नहीं।
0: हाँ चलो ठीक है।
1: हाँ सब चलता रहता है।
0: हाँ।
1: और
0: हम बहुत बार फोन लगाए आपके लगे साहब। फोन तो घंटी जाए लेकिन उठबे न करे। आप सबके आशीर्वाद कृपा की आज फोन लग गया।
1: हाँ देख लीजिए, आज जादू हो गया आपका।
0: हाँ।
1: हाँ अब हम भी आपका गाना ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही गाना मिल जाएगा तो हम तुरंत बजा देंगे आपका गाना। और
0: हाँ।
1: और लेकिन एक चीज है, बच्चों से कह दीजिए कि भाई मोबाइल से प्रोग्राम तो सुने लेकिन मोबाइल तोड़े ना भाई।
0: सही साहब
1: है ना। और अगर वो सुन रहे होंगे तो वैसे भी जान जाएंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस मामले में।
0: अजय साहब वही जो
1: अरे तो मैं टूट पड़े कौन जरूरत आए, वो कब बैठ के सुना है उमा का बताई। अब ऐसे अगर टूट पड़ी है तो कैसे फिर और प्रोग्राम हुआ, कैसे सुनिए है
0: और प्रोग्राम हुआ कैसे सुन मिले। सही है।
1: अब यह है, अब का बताओ जाए, आजकल के लड़के भी जो है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप उनका समझाओ और जो है कि वह अब गलती ना करें सब।
0: हाँ समझावागा, कहीं अपना फोड़ा जी अपना बिगाड़ा जी।
1: हाँ तो चलो ठीक है फिर। हाँ। आपके पसंद के गीत हम प्ले करी थे, उसका सुने।
0: हाँ ठीक बात, धन्यवाद साहब। नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या कॉलर का फोन आ रहा है। हेलो हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: कौन देव बोल रहे हैं सर, जनपद आजमगढ़ से बोल रहा हूं सर।
0: अरे वाह, आप तो बहुत देर से, मतलब बहुत दूर से, पवन देव
1: जी। सर जी, आप कैसे हैं सर?
0: हम एकदम बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, मस्त
1: जी सर।
0: तो वहाँ प्रोग्राम सुनते रहते हैं पूरे?
1: जी सर, सुनता रहता हूँ, प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है पवन जी, उतनी दूर से है?
1: हेलो फरमाइश सर, सुनता रहता हूँ मैं सर, यहीं अयोध्या में रहता हूँ।
0: अच्छा, रहते आप अयोध्या में हैं और रहने वाले आजमगढ़ के? आजमगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं?
1: आजमगढ़ सर फूलपुर तहसील के रहने वाला हूँ।
0: वाह क्या बात है, फूलपुर, समझ गया मैं। तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: मैं सर करण अर्जुन का गीत सुनना चाहता हूँ सर।
0: किसका?
1: करण अर्जुन।
0: अच्छा, करण अर्जुन का।
1: तो
0: हाँ, तो क्या करते हैं आप?
1: मैं सर जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, किस में, किस, कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं आप?
1: नहीं सर, सरकारी नौकरी करता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो करण करण अर्जुन का कौन सा गाना सुनवा दें?
1: कोई भी सर सुना दीजिए।
0: ठीक है, तो हम एकदम
1: सर, मेरे साथ हैं हमारे मित्र हैं अमन जी सर।
0: अच्छा, तो इस समय आप पोस्ट यहाँ अयोध्या में हैं?
1: जी जी सर जी।
0: चलिए, बढ़िया लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ रह के प्रोग्राम सुन रहे हैं और रहने वाले आजमगढ़ के हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक गीत प्ले कर दिया आपके लिए, करण अर्जुन फिल्म का।
2: खड़गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलम भुशुण्डे शिर शङ्खं दन्दत सिङ्करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्ग

श्रोताओं, फिलहाल हेलो अयोध्या का सफर आज का हुआ पूरा। मिलाते रहिएगा फोन और करिएगा बातें, क्योंकि ये लाइव फॉरवर्ड प्रोग्राम हेलो अयोध्या है। फिलहाल दीजिए आज के इस कार्यक्रम से विवेकानंद को इजाजत। आपको बताएं, कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे अरविंद कुमार। फिलहाल आज का नमस्कार।

0: सुना थे सखी सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं, कुछ देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष

0: विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujhe.